परम विरक्त संत राम सुखदास जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मान अपमान की भावना को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है उसे कोई अभाव हो ही नहीं सकता। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न कर लिया, मैं रोजी रोटी जुटाने के लिए इतना व्यस्त रहता हूं कि भक्ति उपासना कर ही नहीं पाता, मेरा कल्याण कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा, आप चार संकल्प ले लीजिए। पहला, किसी का जीना दुखाइए। दूसरा, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा कर दीजिए। तीसरा, सत्य बोलिए। और चौथा, सवेरे शैया त्यागने से पहले

एयर फ्री होना नहीं होता। यहाँ मस्त एक ऐसी हालत की तरफ इशारा करता है जहाँ इंसान दुनिया के शोर से बहुत दूर, बहुत परे हो जाता है और इश्क के हकीकी यानी डिवाइन लव में डूब जाता है। मतलब दुनिया के हिसाब से शायद आदमी होश में हो लेकिन अंदर से इश्क में बेहोश है। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना। हम लोग तो नॉर्मली किसी के प्यार में पड़ते हैं तो बस फोन ही चेक करते रहते हैं, ऑनलाइन है या सीन क्या है, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक। बट सूफी कहते हैं जिस इश्क में खुद को ही भूल जाओ वही असली मस्त है। अब आते हैं दूसरे एक और इंटरेस्टिंग शब्द पर, कलंदर। जी हाँ, कलंदर एक ऐसे फकीर या दरवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दुनियावी बंधनों से परे है और स्पिरिचुअल राह पर जीने वाला है। और इस कलाम में जिस कलंदर का नाम बार बार आता है वो है लाल शाहबाज कलंदर। उनका संबंध सिंध के सहवान शरीफ से है और उनकी दरगाह आज भी बड़े ही स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में जानी जाती है। उनका नाम आते ही एक तस्वीर दिमाग में आ जाती है, एक फकीर, एक दरवेश, एक ऐसा इंसान जिसके लिए इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। और शायद इसीलिए उनके नाम से जुड़ा ये कलाम इतनी दूर तक पहुंच गया। दमादम क्यों? अब एक और सवाल, दमादम का मतलब? इसमें दम को सांस या ब्रेथ के अर्थ में समझा जाता है। तो जब बार बार कहा जाता है दमादम मस्त कलंदर तो भावना कुछ ऐसी बनती है, हर सांस में उस मस्त फकीर का जिक्र है। सोचिए हम दिन भर कितनी सांसें लेते हैं और हर सांस के साथ अगर किसी के दिल में ग्रैटिट्यूड, फेथ और इश्क हो तो फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है क्या? सुबह 5 बजे मेडिटेशन, 7 बजे प्रेयर्स, 8 बजे स्पिरिचुअलिटी खत्म। नहीं जी, सूफी सोच कहती है सांस चल रही है तो याद चल रही है। और यहां कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। दमादम मस्त कलंदर की रचना को लेकर एक ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कहानी नहीं मिलती। लोक रिवायतों में इस कलाम को अलग अलग सूफी पोएट्स और परंपराओं से जोड़ा गया है। कुछ रिवायतें इसे अमीर खुसरो से जोड़ती हैं और बाद में बुल्ले शाह के योगदान की बात करती हैं। लेकिन इसके लिखित प्रमाण और एग्जैक्ट ओरिजिन्स को लेकर स्कॉलर्स में अनसर्टेनिटी है। मुझे लगता है शायद इसी में इस कलाम की सबसे खूबसूरत बात छुपी है। कुछ गीत किसी एक इंसान के नहीं रह जाते, वो लोगों के हो जाते हैं, उनके बन जाते हैं। एक ने लिखा, दूसरे ने बदला, तीसरे ने गाया, चौथे ने उसमें अपना दर्द डाल दिया और पांचवी पीढ़ी ने उसे अपनी दुआ बना लिया। क्या कला का इससे खूबसूरत सफर हो सकता है? सोच के देखिए। लाल मेरी पथ रखियो, अब आती है वो लाइन जो बहुत लोगों ने सुनी है। लाल मेरी पथ रखियो, यहाँ एक भावना है, मेरी लाज रखना, मेरी रक्षा करना। एक भक्त अपने पीर, अपने स्पिरिचुअल गाइड के सामने खड़ा है। उसके पास शायद ना कोई बड़ी फिलॉसफी है, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र है, ना कोई लंबी स्पीच है, बस एक सिंपल सी बात है, दिल से निकली हुई बात, मेरी लाज रख लेना। और सच बताइए, इंसान की सबसे बड़ी दुआ अक्सर होती भी तो यही है। भगवान से हम क्या मांगते हैं? थोड़ा सुकून, थोड़ी रक्षा, अपनों की खुशी और मुश्किल वक्त में बस इतना सहारा कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस कलाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ एक जगह का गीत बनकर नहीं रहा। सिंध से निकली स्पिरिचुअल परंपरा ने पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान के कई सूफी और लोकगीत परंपराओं में अपनी जगह बनाई है।
नुसरत फतेह अली खान से लेकर अबिदा परमीन, सबरी ब्रदर्स, वडाली ब्रदर्स और कई अन्य कलाकारों

ने इसे अपने अपने ही अंदाजों में गाया है। और देखिए कमाल, आवाज अलग, सुर का अंदाज अलग, जमाना अलग, लेकिन जज्बा जज्बा वही। इसीलिए जब कव्वाल गाता है दमादम मस्त कलंदर, तो सामने बैठा आदमी ये नहीं सोचता कि ये किस लैंग्वेज का गाना है, वो बस महसूस करता है और शायद असली म्यूजिक वही होता है दोस्तों, जिसे समझने के लिए कोई डिक्शनरी नहीं, सिर्फ आपका दिल चाहिए। वैसे एक कन्फेशन करूं, मस्त शब्द का सफर भी कमाल है। सूफी के लिए मस्त इश्क में डूबा हुआ, हमारे लिए मस्त भाई पार्टी कैसी थी, मस्त फिल्म कैसी थी, मस्त सैलरी आई भाई मस्त, और सैलरी के अगले दिन भाई यूपीआई कर दे, बैलेंस खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे कलाम की सबसे गहरी बात मुझे लगती है इसका समर्पण, सरेंडर। हम जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, करियर कंट्रोल में, रिलेशनशिप कंट्रोल में, फ्यूचर कंट्रोल में, बच्चे कंट्रोल में, फोन की बैटरी भी 100% चाहिए हर समय। लेकिन जिंदगी किसी के कंट्रोल में नहीं होती, कभी ट्रेन लेट होती है, कभी फ्लाइट लेट होती है, कभी प्रमोशन लेट होता है, कभी शादी लेट होती है, कभी रिप्लाई भी लेट होते हैं, और कभी तो समझ ही नहीं आता कि लाइफ का डेस्टिनेशन कहाँ है। शायद सूफी सोच वहीं पर एक अलग रास्ता दिखाती है, हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं, कभी कभी थोड़ा छोड़ देना जरूरी है, थोड़ा भरोसा, थोड़ा इश्क, थोड़ा समर्पण, और थोड़ा जो होगा देखा जाएगा। तो आज जब आप दोबारा दमादम मस्त कलंदर सुने, सिर्फ बीट मत सुनिएगा, एक बार उसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। दमादम मतलब हर सांस, और मस्त मतलब इश्क में डूबना। कलंदर एक ऐसा फकीर जो दुनियावी बंधनों से बहुत परे है, और फिर खुद से एक सवाल पूछना, हम अपनी जिंदगी में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और अगर एक दिन के लिए सब कुछ साइड में रख दिया जाए तो क्या हम अपनी सांसें, अपनी सांसों की आवाज सुन पाएंगे? शायद शायद इसी को कहते हैं मस्त होना। दोस्तों आज की बातें इधर की उधर की में बस इतनी सी बात, कुछ गीत गानों तक पहुंचते हैं, कुछ दिल तक पहुंचते हैं, और कुछ सीधे रूह में उतर जाते हैं। दमादम मस्त कलंदर शायद उन्हीं में से एक गीत है। आप सुन रहे हैं SN रेडियो, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा।

एक बच्चा दूसरे बच्चे से कम मार्क्स ला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कम है। उस एजुकेटर ने एक और बहुत ही खूबसूरत बात कही, टीचर का काम ये नहीं है कि बच्चे को ये यकीन दिला दे कि वो कुछ नहीं है। टीचर का काम इनफैक्ट ये है कि उसे ये यकीन दिलाना है कि तुम दोबारा खड़े हो सकते हो। क्या बात है, ये सिर्फ टीचर पर लागू नहीं होता, पेरेंट्स पर भी, फ्रेंड्स पर भी, बॉसेस पर भी और हम सब पर। कभी कभी किसी इंसान को लेक्चर नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है जो कहे ठीक है गिर गए, अब बताओ दोबारा कब ट्राई करना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको याद है कभी आप किसी एक एग्जाम में फेल हुए, किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, किसी कंपटीशन में हार गए, किसी जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, किसी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ, या कोई ऐसा काम था जिसमें आपको लगा मुझसे तो नहीं होगा। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, क्या वो मोमेंट आज भी आपकी पूरी जिंदगी है? नहीं ना, आप आगे बढ़े, उससे बहुत आगे बढ़े और जीवन में बहुत कुछ अचीव करा। वो बस एक चैप्टर था, आपकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। तो दोस्तों, लाइफ भी ना थोड़ी अजीब राइटर है, कभी हीरो को बिना रीजन के गिरा देती है, कभी विलेन को अननेसेसरीली इम्पोर्टेंस दे देती है, कभी एक चैप्टर इतना बोरिंग होता है कि लगता है बस भाई बुक बंद, लेकिन फिर अगला पेज खुलता है और कहानी ही बदल जाती है। इसलिए एक एग्जाम तुम्हारी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करता, एक रिजेक्शन तुम्हारी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकता, एक मिस्टेक तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, एक फेलियर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की सिचुएशन तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, और हर सक्सेसफुल इंसान हर बार सक्सेसफुल नहीं रहता। डिफरेंस कई बार सिर्फ इतना सा होता है, किसी ने उनसे कहा चलो एक बार और ट्राई करते हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को हर बार कहा जाए तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो बच्चा खुद ही मान लेगा शायद मुझसे नहीं ही होगा। लेकिन अगर कोई कहे गलती हुई, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया फिर समझाएंगे, फेल हो गए फिर से पढ़ेंगे, तो बच्चा सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सीखता, वो ये सीखता है कि गिर कर हर समय उठना है, वहीं नहीं रहना। एक कन्फेशन करूं, हम बड़े लोग भी मार्कशीट वाले बच्चों से बहुत अलग नहीं हैं। हमारे बस एग्जाम्स के नाम बदल जाते हैं। उनका एग्जाम होता है मैथ, साइंस, इंग्लिश, हमारा एग्जाम होता है जॉब इंटरव्यू, ईएमआई, रिलेशनशिप, बिजनेस, बच्चे, फैमिली, और कभी कभी मंडे मॉर्निंग। कभी इंटरव्यू खराब हो गया तो हम सोचते हैं करियर खत्म, एक बिजनेस लॉस हुआ सब खत्म, एक रिलेशनशिप टूट गया अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। लेकिन जिंदगी का एक बहुत सिंपल रूल है, जब तक सांस है तब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट जारी है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कितने आंसर्स याद रखते हैं, एजुकेशन शायद ये भी है कि हम फेलियर को कैसे देखते हैं, अपनी गलती को कैसे समझते हैं, दूसरे की गलती को कितनी दया से देखते हैं, और किसी गिरते हुए इंसान को धक्का देते हैं या हाथ बढ़ाते हैं। अगली बार जब कोई बच्चा कम मार्क्स लाए तो उसे तुरंत ये मत पूछना शर्मा जी के बेटे के कितने आए, पहले पूछना कि तुम ठीक हो, फिर पूछना कहां दिक्कत हुई, और फिर चलो मिलकर देखते हैं। तो आज की बातें इधर की उधर की एक बात अपने पास रख लीजिए, अगर आपका कोई एग्जाम खराब हुआ है तो आप फेल नहीं हुए, आपको रिजेक्शन मिला है, आपका बिजनेस नहीं चला, आपकी जॉब चली गई, या आपका कोई रिश्ता टूट गया, तो प्लीज खुद को जीरो मत समझिए। आपका रिजल्ट जीरो हो सकता है, आपका स्कोर जीरो हो सकता है, आपका

अटेम्प्ट जीरो हो सकता है, लेकिन आप जीरो नहीं हैं, आप अभी भी यही हैं, और जब तक आप यहाँ हैं कहानी बाकी है। जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, अगली बार किसी स्ट्रगलिंग इंसान को देखें तो ये मत पूछिए तुम फेल क्यों हुए। कभी कभी बस इतना पूछ लेना कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। हर इंसान को हर वक्त सल्यूशन नहीं चाहिए होता, कभी कभी उसे सिर्फ एक मौका चाहिए होता है एक बार फिर से खड़े होने का, एक बार फिर से कोशिश करने का। और शायद ऐसा इंसान जो उसे गिरने के बाद भी जीरो ना कहे। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे SN रेडियो पर बातें इधर की उधर की।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: मम्मी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? बेटा बोला, वो मम्मी फिल्म देखने गया था। मम्मी बोली, कौन सी? बेटा बोला, माँ की ममता। मम्मी बोली, अच्छा जा, ऊपर नई फिल्म लगी है, वो भी देख ले। बेटा बोला, ऊपर कौन सी? मम्मी बोली, बाप का कहर।

90s का वो एक रुपया जिसकी कीमत आज भी हजारों से ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। आज की बातें इधर की उधर की में बात ना किसी बड़ी सक्सेस की है, ना किसी करोड़ों की प्रॉपर्टी की, ना किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट की। आज की बात है सिर्फ एक रुपये की। हाँ जी, एक रुपया। आज के जमाने में जिसे हम शायद वॉलेट में रखना भी पसंद नहीं करें, लेकिन एक वक्त था जब एक रुपया मिलना मतलब खुशी का एक पूरा पैकेज था। और अगर वो एक रुपया पापा की जेब से नहीं, पापा की हथेली से मिले, तो फिर उसकी कीमत बस कैलकुलेटर से नहीं निकाली जा सकती। आप में से कितने लोगों को याद है कि 90s का या उसके आसपास का वो बचपन। रात को खाना खाने के बाद पापा चारपाई पर लेट गए और फिर आवाज आई, बेटा जरा पैर दबा दे। और बच्चा पहले तो मन में सोचता था यार अभी, लेकिन फिर पैर दबाने लगता था, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा। और पापा आंखें बंद, चेहरे पर हल्का सा सुकून, और फिर कुछ देर बाद जेब में हाथ जाता था और निकलता था एक चमकता हुआ 1 रुपए का सिक्का, हथेली पर रखते हुए एक छोटी सी मुस्कान, और बच्चे की आंखों में जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। अब सोचिए, आज अगर किसी एक बच्चे को 1 रुपया देकर बोलें, बेटा जाओ मन करे जो खरीद लो, बच्चा शायद हमें देखेगा, फिर सिक्के को देखेगा और फिर बोलेगा, पापा इससे क्या आएगा? और हम कहेंगे, बेटा हमारे जमाने में तो इससे दुनिया आ जाती थी। और शायद सच में हमारे जमाने में 1 रुपए का मतलब था ऑप्शंस। टॉफी लेनी है? हाँ। इमली? हाँ। बिस्किट? हाँ। संतरे वाली गोली? हाँ। और अगर थोड़ा स्मार्ट बच्चा हुआ तो 1 रुपया खर्च भी नहीं करता था, जेब में रखता था और अगले दिन स्कूल में प्राउडली दिखाता था।

बच्चा शायद उस वक्त इकोनॉमिक्स नहीं समझता था, लेकिन इमोशंस इमोशंस वो खूब समझता था। उसके लिए वो सिक्का कह रहा था, पापा खुश हैं, और बचपन में इससे बड़ी सैलरी क्या होती। अब थोड़ा सवाल अपने आप से पूछिए, आज हमारी जेब में पैसे ज्यादा हैं, यूपीआई है, कार्ड्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, वॉलेट नोट्स हैं, फोन में बैंक है, और कभी कभी तो फोन में इतने पेमेंट ऐप्स होते हैं कि खुद हमें याद नहीं रहता कि किसका पासवर्ड, किसका ओटीपी क्या है, पैसा है कहाँ। लेकिन क्या आज वो एक रुपए वाली खुशी है। कभी हम बच्चे को 100 रुपए देते हैं, 500 देते हैं, बर्थडे पर बड़ा सा गिफ्ट देते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ वो 10 मिनट बैठते हैं, क्या हम उसके बाल सहलाते हैं, क्या हम उससे पूछते हैं स्कूल में आज क्या हुआ। नहीं, हम ऐसा आज कुछ नहीं पूछते। और क्यों नहीं पूछते, क्योंकि आज जब कोई सवाल पूछा जाए तो बच्चा जवाब देने के बजाय अपना फोन देख रहा होता है, और पापा भी तो फोन ही देख रहे होते हैं सवाल पूछते समय। दोनों हैं तो एक ही रूम में, लेकिन दोनों अपनी ही अपनी दुनिया में हैं। पहले बच्चा पापा के पास जाता था, बोलता था, पापा 1 रुपया दो। आज बच्चा कहता है, पापा यूपीआई कर दो। और पापा, कितना? 500। क्यों? बस चाहिए। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। टिंग टिंग टिंग, पैसा ट्रांसफर हो गया, लेकिन क्या प्यार भी ट्रांसफर हुआ? जरा कभी अपनी यूपीआई ऐप से पूछ के देखिए। यही तो सवाल है, पहले 1 रुपये के साथ पापा की उंगली पकड़ने का रिश्ता था, आज कभी कभी 500 के साथ भी सिर्फ नोटिफिकेशन आता है, पेमेंट सक्सेसफुल। मुझे लगता है हमने पैसे तो संभालना सीख लिया, लेकिन पैसों से जुड़ी जो यादें थी वो बनाना बहुत दूर छोड़ा है। 1 रुपया, 1 टॉफी, 1 इमली, 1 गोला, 1 छोटा सा बिस्किट का पैकेट, ये सब चीजें आज शायद बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बचपन में यही तो बड़े पल थे। और अजीब बात देखिए ना, आज हम बच्चों को बड़ी बड़ी चीजें देना चाहते हैं, महंगे महंगे टॉयज, नए नए फोन्स, फैंसी फैंसी वेकेशंस, लेकिन बच्चे को अक्सर क्या याद रहता है, पापा मेरे साथ पार्क गए थे, पापा ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था, मम्मी ने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए थे, दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी। यानी यादें महंगी नहीं होती, बस उनमें वक्त लगता है। अब एक पल के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पापा अब इस दुनिया में ही नहीं है। हो सकता है उनकी जेब में आज बहुत पैसे हो सकता है उनके पास अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन कभी कभी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कमी रह जाती है, जो कभी पूरी नहीं होती, कैसे भी पूरी नहीं होती। और बस मन कहता है कि काश एक बार पापा फिर से आवाज लगा दें, काश एक बार मैं फिर पापा बोल पाऊं, काश एक बार वो कह सके कि बेटा जरा पैर दबा दे, जरा चंपी कर दे। और हम कहते, पापा आज पूरा 1 घंटा दबाऊंगी। और फिर जेब से वही पुराना सिक्का निकलता, 1 रुपया। शायद आज वो 1 रुपया किसी दुकान से कुछ ना खरीद पाए, लेकिन वो पापा की याद, उससे ज्यादा कीमती क्या होगा। आज की बातें इधर की उधर की में एक छोटा सा यादों का खेल करते हैं। आप अपने मन में सोचिए, आपके बचपन में 1 रुपये में क्या मिलता था? टॉफी, इमली, गोला, बिस्किट, या स्कूल के बाहर वाली कोई ऐसी चीज जिसका नाम आज भी सुनते ही बचपन जवान हो जाता है।

दूसरा सवाल, आपको बचपन में सबसे ज्यादा पैसे कौन देता था? पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी? और अगर वो इंसान आज आपके पास नहीं है तो एक मिनट के लिए आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए। हो सकता है आपको एक रुपया याद ना आए, लेकिन उनकी हथेली की गर्माहट जरूर याद आएगी। सच कहूं, हमारे बचपन का सबसे बड़ा एटीएम पापा की जेब थी और सबसे ट्रस्टेड बैंक मम्मी की अलमारी और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट दादा दादी की वो कहानियां और सबसे बड़ा इंश्योरेंस घर के बड़े लोगों का वो साथ। तो हम फाइनेंशियली रिच नहीं थे शायद, लेकिन इमोशनली हम बहुत अमीर थे। आज पैसा बढ़ गया, सुविधाएं बढ़ गईं, चीजें बढ़ गईं, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियां वो कम हो गई। दोस्तों, आज अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो उनके साथ थोड़ा वक्त बिता लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी पुरानी कहानियां सुन लीजिए, उनके साथ चाय पी लीजिए। और अगर कभी वो कहें बेटा जरा पैर दबा दे, तो प्लीज मोबाइल साइड में रख दीजिए और पैर दबा ही दीजिए। हो सकता है उनकी जेब से एक रुपया ना निकले, लेकिन उनकी आंखों की वो छोटी सी मुस्कान आपको जिंदगी भर का इनाम दे जाएगी, क्योंकि आखिर में एक रुपये की कीमत उस सिक्के में नहीं होती, उस हथेली में होती है जिसने वो रुपया आपकी हथेली पर रखा है। और कुछ रिश्ते पैसे से नहीं, वक्त से अमीर होते हैं। तो आज थोड़ा वक्त बचाइए किसी अपने के नाम, किसी पुरानी याद के नाम, और शायद अपने बचपन के उस 90s वाले एक रुपये के नाम। मैं हूं आपकी तरानों की हमसफर आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे SN रेडियो पर बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ, कुछ बातें होंगी दिल की और कुछ इधर उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया प्यार भी एकदम शतरंज जैसा होता है, एक चाल गलत चली नहीं कि सीधे शादी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक और बात बताता हूं, इधर उधर की लेकिन बहुत ही जोश भर देने वाली। जापान ने पहली बार सन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। स्वीडन में आयोजित ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए जापान ने अपने दो एथलीट याहिको मिशिमा और शिजो कानाकुरी को भेजा था, लेकिन उनके लिए जापान से स्वीडन तक का सफर आसान नहीं था। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों को अपनी यात्रा पूरी करने में करीब 18 दिन लगे। वो सबसे पहले पानी के जहाज से रूस पहुंचे, इसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा का रेल यात्रा सफर उन्होंने किया, लिहाजा दोनों ही खिलाड़ियों को तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिला। प्रतियोगिता के दिन शिजो कानाकुरी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे। उन्होंने खूब जोर लगाकर मैराथन की शुरुआत की, लेकिन आधे रास्ते में ही बेहोश हो गए। मैराथन देख रहे कुछ स्थानीय लोग उन्हें अपने घर ले गए, जहां अगली सुबह उन्हें होश आया। शिजो अपने प्रदर्शन से बहुत दुखी थे। दुख से डूबे हुए वो बगैर स्टॉकहोम के ओलंपिक अधिकारियों को बताए जापान वापस लौट गए, इसलिए एसोसिएशन ने उनके नाम के आगे मिसिंग यानी कि गुमशुदा लिख दिया। स्वीडन नेशनल ओलंपिक खेलों की किताबों में वो कई सालों तक गुमशुदा रहे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने साल 1920 और 1924 में जो ओलंपिक्स गेम आयोजित किए गए थे उसमें हिस्सा लिया था। साल 1967 में स्वीडिश नेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने शिजो कानाकुरी से स्टॉकहोम वापस आकर अपनी अधूरी मैराथन पूरी करने का आग्रह किया। है ना आश्चर्यजनक बात दोस्तों, कौन याद रखता है इतने सालों तक कि उन्होंने अपनी मैराथन पूरी नहीं की थी, वो मिसिंग थे। 75 साल के उम्र में वो वापस आए और अपनी अधूरी रेस पूरी की। मैराथन पूरी करने का समय था 54 साल 8 महीने 6 दिन 5 घंटे 32 मिनट और 20.3 सेकेंड्स। ये इतिहास की सबसे लंबी मैराथन दौड़ थी दोस्तों। है ना आश्चर्यजनक बात, लेकिन मैराथन दौड़ को पूरा करने का जोश लगातार कायम रहा, खिलाड़ी के अंदर भी और जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित किया था उन अधिकारियों में भी। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।

शर्मिली। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज़।

आइए दोस्तों, आपको आज बताते हैं मोटाज अजय झा जी के बारे में। जब चारों तरफ अपनों की लाशें बिखरी हों, अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ खानदान का कोई बुजुर्ग मलबे के नीचे से बचा लेने के लिए पुकार रहा हो और संज्ञा शून्य नन्नी भांजी या भतीजी एक सवाल अपनी हिचकी में दबाए आपके हाथों में दम तोड़ देती हो कि मैंने तो दुनिया अभी देखी ही नहीं थी, तो आपकी मनस्थिति कैसी होगी दोस्तों? इससे ज्यादा त्रासद मंजर कोई दूसरा नहीं हो सकता, मगर युद्धग्रस्त इलाकों के बाशिंदों की नियति ऐसे दृश्यों से उनकी मुठभेड़ कराती ही रहती है। गजब यह है कि इस कोहराम के बीच भी लोगों को जीना पड़ता है। ऐसे हालात में एक पत्रकार किस साहस से अपने फर्ज को अंजाम देता है, फिलिस्तीनी पत्रकार मोटाज अजय झा इसकी मिसाल हैं। शांत इलाकों के नौजवान जिस उम्र में रोमानी दुनिया के हसीन ख्वाब बुना करते हैं, मोटाज ने अपनी जान जोखिम में डालकर फिलिस्तीन की जमींदोज हुई बस्तियों और बमबारी के शिकार बने बेगुनाहों की तस्वीरों से एक तारीखी दस्तावेज तैयार किया है। इस काम के लिए उन्हें दुनिया भर से सराहना मिल रही है और अब प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने 2024 की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में उनको शुमार किया है। गाजापट्टी के दीर अल बलाह शरणार्थी शिविर में नवंबर 1999 में मोटाज पैदा हुए। जब होश संभाला तो अपने चारों तरफ तनाव ही पसरा पाया। सुकून और बेफिक्री से शायद फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों का कम ही साबका पड़ता है। मोटाज जब 6 साल के थे, अपनी बस्ती की सड़कों पर उन्होंने इजरायली टैंकों को दौड़ते देखा। जब वो 8 साल के हुए तो गाजा पट्टी पर अपना दबदबा कायम करने के लिए फिलिस्तीन के हमास और फतेह गुटों के लड़ाकों को एक दूसरे का खून बहाते देखा, और उसके बाद तो हर दूसरे साल इजरायल हमास बकायदी से लड़ते भिड़ते ही रहे। इन भिड़ंतों ने ही वहां के बच्चों के भीतर खौफ को खत्म कर दिया। इंसान होने की सिफत बस इतनी ही बची रही कि तनाव और हिंसा के बीच भी इन इलाकों के शिक्षकों ने अपना धर्म निभाना नहीं छोड़ा और ना ही डॉक्टरों ने इलाज करने की अपनी सेवा को छोड़ा। इसके कारण मोटाज जैसे बच्चों का मुस्तकबिल संवरता रहा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दाखिला लिया। यहां पढ़ते हुए मोटाज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी से जुड़ गए, ताकि रेड क्रॉस के जरिए वो बेबस लोगों की कुछ मदद कर सकें। साल 2018 की बात है। गाजा इजराइल सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते देखते लड़ाई में बदल दिया गया। मोटाज तब 19 साल के रहे होंगे। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बैनर तले राहत कार्य करते समय एक इजरायली स्नाइपर ने उनकी जांग को गोलियों से जख्मी कर दिया। मोटाज का जख्म कुछ हफ्तों में भर गया, लेकिन हिंसा जारी रही। इस दारुण अनुभव को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आईं और इस तरह उनके अंदर एक पत्रकार पैदा हुआ। साल 2021 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद मोटाज एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी से जुड़ गए। बहुत ही जल्द उनका नया ठिकाना एक अमेरिकी संगठन बना, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की खातिर संयुक्त राष्ट्र राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करता था। मोटाज बहुत खुश थे। उन्हें इस संगठन में फोटो और वीडियो प्रोड्यूसर की नौकरी मिली। वो अपने गाजा के लिए कुछ करना चाहते थे। आखिरकार वो उनका घर है। वहां की जिंदगी के विविध रूपों और दुश्वारियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया, मगर दुर्योग से वो वहशी सुबह जल्द ही आ गई, जिसके प्रतिशोध ने गाजा को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल पर अपने बर्बर हमले से हमास ने असंख्य दुखों को न्योता दे दिया। हमास ने जब इसराइल पर रॉकेट दागे, तब मोटाज को यह लग रहा था कि इस बार जंग बहुत महंगी साबित होने वाली है। कुछ घंटों बाद ही इजरायली हमले शुरू हो गए, भयानक वेग और बर्बरता को समेटे हुए। मोटाज के कैमरे ने उनको फिल्माना शुरू किया।
आम फिलिस्तीनी की पीड़ा, बेबसी और युद्ध की विडंबना उनकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। मगर 12 अक्टूबर को उन्होंने जो वीडियो और तस्वीरें डाली वो लाखों लोगों को मर्माहत कर गई। इसराइल के हवाई हमले में उनके परिवार के 15 सदस्य मारे गए। अगले 107 दिनों तक वो इसी तरह हकीकत तफसील के साथ दुनिया के सामने लाते रहे। मगर इसराइली हमले की आलोचना करते हुए भी मोटाज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके किसी संदेश से नफरत की बूंद आए। मगर इसराइली फौज को यह सब नागवार गुजर रहा था। मोटाज को अलग अलग नंबरों से धमकियां मिलने लगी। घर पर बमबारी का खतरा बढ़ने लगा। अक्टूबर से गाजा में 120 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। ऐसे हालात में मोटाज के लिए एक एक दिन जब भारी पड़ने लगा तो उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों छोटे भाइयों और माता पिता के साथ उन्होंने गाजा से निकल जाने की इजाजत मांगी। मगर 23 जनवरी को गाजा छोड़ते हुए वो काफी गमगीन और कुछ शर्मिंदा भी थे, क्योंकि उन्हें जो सहूलियत मिली वो उनके देश के तमाम लोगों को हासिल नहीं है। मोटाज अब दोहा में रह रहे हैं। उन्हें जब भी मनोचिकित्सकों से मिलने की सलाह दी जाती है वो यही कहते हैं, अभी युद्ध विराम हुआ कहां है। वो इस युद्ध के खिलाफ दोहा से भी सक्रिय हैं। मोटाज की बहादुरी ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार? रेडियो के साथ

आइए दोस्तों, बताता हूं, ये कुछ काम भी देशभक्ति की ही मिसाल है। आज सुबह जैसे ही उसने उठकर बाहर झांका, उसे कुछ समझ नहीं आया। गली में कितना कचरा जमा था, कितनी बदबू आ रही थी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उधर कब से नल बहा जा रहा है। अपना घड़ा भर जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए ना, बाकी लोगों को भी तो प्यास लगती है, कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन नल खुला छोड़कर बस चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझते कि इन छोटी छोटी बातों से कितना नुकसान होता है। कुछ लोग सड़क पर टेंट लगा देते हैं और गड्ढा भी खोद देते हैं। अरे भाई, इस सड़क निर्माण में करोड़ों रुपया का खर्च आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, घर से बाहर निकल आया, बगीचे में गया, हरे भरे पेड़ों से बातें करने लगा। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, बच्चे झूल रहे थे, लोग टहल रहे थे और कुछ व्यायाम भी कर रहे थे। इस खूबसूरत माहौल को देखकर वो सोचने लगा, इस बगिया की तरह ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, पर कुछ लोगों की नादानी की वजह से थोड़ा बिगड़ जाती है। तभी उसने देखा कि एक जगह कचरा बिखरा पड़ा था, कुछ लोग नमकीन के खाली पैकेट बिखेर कर चले गए। उसने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। वो बगीचे से बाहर आ गया, सामने रेलवे स्टेशन था, यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पर ये क्या, इधर धक्का मुक्की कैसी, देखा तो लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। उसने सुरक्षा कर्मी से बात की, उसके आने पर सब व्यवस्थित हो गया। काफी देर हो गई, वो सड़क से चलते हुए घर आ रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे काफी चोट आई, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। वो एक टैक्सी वाले की मदद से उसको अस्पताल ले गया। एक अखबार वाले ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, लोग तो समस्याओं से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उनसे जूझने में लग जाते हो, आपको क्या मिलता है। वो बोला, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसलिए हमें इसे जूझने में संकोच कैसा। देखने में ये छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इनका संबंध सीधा देश से है। सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करना भी देशभक्ति नहीं है। नेता बन गए तो क्या, जब देश के लिए कुछ किया ही नहीं। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने आसपास को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, चाहे वो पानी हो या पैसा, अन्न हो या बिजली। ऐसा करके हम जाने अनजाने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसा करके हम बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय देते हैं। दोस्तों, बात में तो दम है।

आइए दोस्तों एक और काम की बात बताता हूं। एक मंत्र है, एक जुगाड़ है, एक योजना है, एक युक्ति है, अपना लीजिए, बहुत मजा आएगा। हम सभी अपनी जिंदगी में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पाना चाहते हैं ना, हर वक्त हर चीज में। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देते चलिए। जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया कहेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारी तरफ अपने आप आएंगी। अब देखिए कितना आसान तरीका है ना ये। तो जिंदगी में ज्यादा पाने का आसान तरीका है धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना। आदत डालिए दोस्तों, जिससे भी मिलिए, जहां पर भी मौका मिले, शुक्रिया अदा करना आपकी आदत बन जाना चाहिए। शुक्रिया करते चलिए, जिंदगी में ज्यादा ज्यादा ज्यादा पाते चलिए।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे भावना और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्या व्हील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं हम उनका जीवन परिचय।
1: मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य आयर और अय्या दुराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मेनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अवुल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था, काफी वसी और पक्का मकान था, रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वर मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासर किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोड़ी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कुंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्स स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा, मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के माने सिर्फ इतने ही जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, न ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और मेरे अम्मा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का, मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं बसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां 2 हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे, मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपने ज्यादा खुसूसी मजमून चुनना था, यानी अपनी स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था, तो मैंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुतासर किया, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडले, प्रोफेसर नरसिंह राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले

0: यके बाद दीगरे तीन मौतें हो गई मेरे घर में। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की जरूरत थी। 100% लगन से काम करने की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकम्मल नीति और पूरी लगन से SLV-3 का ख्वाब 1979 के दरमियान में जाकर पूरा हुआ। हमने SLV-3 की परवाज का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया था। 23 मीटर लंबा, 4 स्टेजेस का यह रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी कजदाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया। हम सब दम में खुद रह गए, सांस रोके बैठे थे। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। तीन सौ 17 सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम और गुस्से से भर गया, नुचड़ गया बिल्कुल, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी जमा तफरीक और बहस मुबासे के बाद मुतमईन हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया और मुसलसल बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ किया प्रोफेसर धवन के सामने, सर मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोचकर मैं दिल को ढारस देता रहा। ये ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वॉन ब्रॉन अपनी सैटर्न लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبہ سمندر میں جا کر گرا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے SLV-3 سے جوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے سپیس پروگرام کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھیں۔ 18 جولائی 1980 صبح 8:03 پر ہندوستان کا پہلا سیٹلائٹ لانچ وہیکل اڑا۔ میں نے روہنی سیٹلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر چاچا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر اندر روہنی انترکش میں تھا۔ اس تمام شور و غل کے بیچ میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ ادا کیے۔
1: میں مشن ڈائریکٹر بول رہا ہوں، ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو۔ چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ روہنی سیٹلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے۔
0: میں بلاک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالا۔ ساری قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹلائٹ لانچ کی قابلیت تھی۔ ہماری قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے اتہاس کا ایک نیا باب کھلا، ایک نیا چیپٹر۔ پردھان منتری اندرا گاندھی نے مبارکباد کا تار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنسدان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی، ہماری اپنی تھی۔ میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بالآخر اس میں کامیاب ہوا، لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدولت میں یہاں پہنچا تھا، وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے۔ میرے ابا، میرے بہنوئی جلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی۔ SLV-3 کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور دلی بلایا پردھان منتری سے ملنے کے لیے۔ میری ایک چھوٹی سی الجھن تھی کپڑوں کو لے کر۔ ہمیشہ سے بڑے آمیانہ سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہہ لو، پردھان منتری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا۔ میرے لیے نہیں، ان کے احترام کے لیے۔ سنا تو پروفیسر دھون بولے، کپڑوں کی فکر مت کرو، تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے۔ ریپبلک ڈے 1981 میرے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدم بھوشن سے نوازا گیا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شہنائی سے بھر لیا۔ شہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی۔ میں رامیشورم پہنچ گیا، ماں کے گلے لگا۔ ابا نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست، میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انعام کا اعلان کر رہا تھا۔ میری بہن زہرا نے میٹھا بنایا گھر میں۔ پکشی لکشمن شاستری نے میرے ماتھے پر تلک لگایا۔ فادر سولومن نے میرے ہاتھ میں صلیب دے کر دعا پڑھی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فخر تھا۔ جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا، جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے۔ 1 جون 1982 میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبورٹری DRDL کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شری آر وینکٹ رمن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ بدرجہ میسائل تیار کرنے کے، ہمیں مکمل اپنی میسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے، تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل میسائل کا پروگرام بن گیا، جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے۔ ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خود مختاری، سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا۔ सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया, टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया, एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना खाव रेक्स को यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकई हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो, या आम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरे मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, ये बड़ी अमन

बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, दो चार बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल केएन सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1,00,000 पेड़ों की कोंपले लगाएंगे, मैंने कहा, और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले, कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था, हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खुली है। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है, अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। '90 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए, लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है? 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने

0: میرے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا، چاہتا تھا کہ قریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولوں۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور وہ تمام باتیں قلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں، ایک طرح سے اپنی سوانح عمری لکھوں، اپنی جیونی۔ میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے اور دشا کی ضرورت ہے، تبھی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدولت میں یہ بن سکا جو میں ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں، بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلے، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں۔ جیسا کہا ہے کسی نے، خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا، زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر، جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو، یہ پڑھے اور اسے چین ملے، یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے، اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے، انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پر لگ جائیں اور اس لو کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے۔
1: دوستوں، آج ہم نے جانا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا جیون پریچے۔ ایسے ہی جانکاری پراپت کرنے کے لیے سنتے رہیے ریڈیو ٹینٹاویل 90.8 ایف ایم چھابوں کی آواز، آر جے بھاونا کے ساتھ۔
2: ریڈیو اسٹیشن 90.8 ایف ایم ٹینٹاویل روز ہانجے 6-8 واگے આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 એફએમ।
3: किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टंडियाबिल 90.8 एफएम आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे गाय के गोबर में कितनी गुणवत्ता है, कितने प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं हम कृषि में, तो इससे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
4: मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, पालेकर जी ने भी करवाए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया। उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है, ओनली देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने देसी गाय के गोबर गौमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गौमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए, जो अन्य किसी में इतने नहीं। तो हम क्या करते हैं जीवामृत बनाने के लिए, देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है। इस गोबर गौमूत्र को इस ड्रम में डाल दें पानी वाले में, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, और इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5 दिन घोलना है। छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार।
5: अच्छा,
4: अब मिश्रा जी, दुनिया में 1 एकड़ का 6 दिन में खाद तैयार हो जाए कोई पद्धति नहीं। और हाँ, और इसमें साइंस क्या है वो सब किसान बंधुओं के लिए समझने की बात यह है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? असंख्य होंगे,
5: बिल्कुल।
4: और मूत्र जो हो खनिजों का भंडार है, जो जमीन को तत्व चाहिए उनसे भरा पड़ा है। अब इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया हमने, वो प्रोटीन है
5: जी।
4: जब वो जीवाणु इस प्रोटीन को खाएंगे तो पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, और गुड़ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो उनमें मिलके वो असंख्य संख्या में बढ़ेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, इतनी मात्रा में बढ़ते। अब इस घोल को हम 6 दिन से 12 दिन के बीच में स्प्रिंकल के द्वारा और ड्रिप के द्वारा या खुले पानी में, पानी के साथ इसको छोड़ दें, एक ड्रम को 1 एकड़ में
5: जी।
4: तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये खेत में जाएगा तो ये वहां जामुन का काम करेगा, जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही ये जीवाणु जामुन का काम पूरे खेत में जाके करेंगे, और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके अनेक तरह के बैक्टीरिया वहां पैदा होंगे, अनेक प्रकार के, और ये बैक्टीरिया ही वो हैं जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है उसको ये खींचेंगे
5: जी।
4: और ये पौधे की जड़ को देंगे। इसके अतिरिक्त हमें नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी बाजार की जरूरत ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, हमारी धरती में फास्फोरस, क्या नाम, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, ये तत्व पहले से ही विद्यमान होते हैं
5: जी।
4: लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए अपने आप पौधे के भोजन का निर्माण नहीं करते।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, हमारे घर में किचन रसोई है, सबके घर में रसोई में नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सारी चीज है, लेकिन उससे अपने आप भोजन तो नहीं बनेगा।
5: अपने आप तो नहीं बन सकता जी,
4: सारी चीज है लेकिन भोजन नहीं बनेगा। भोजन कब बनेगा? जब हमारी माता बहन उठेगी, वो आटे को परात में डालेगी, पानी से गूंदेगी, चपाती बनाएगी, दाल उठाएगी, सब्जी काटेगी, छौंका लगाएगी, पकाएगी, तभी वो भोजन तैयार होगा खाने के लिए। बिल्कुल जो काम रसोई में हमारी माता बहन करती है वही काम किसान के खेत में जीवाणु करता है। जो तत्व धरती में है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम आदि जो तत्व हैं, वो गांठ बनाए पड़े हैं, उनसे उनको तोड़ के भोजन बनाने का काम पौधे के लिए जीवाणु करता है
5: जी।
4: तो धरती में जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, लेकिन जो रासायनिक खेती है वो इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो यदि लंबे समय आप रासायनिक खेती करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बंजर जमीन बना के देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा एक समय के बाद, बिल्कुल कुछ नहीं पैदा होगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सबसे बड़ा मित्र है। और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा?
5: नहीं जिएगा।
4: सीधा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
5: जी,
4: वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा,
5: बिल्कुल
4: वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं। तो बताइए धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और इस बात को साइंटिस्ट समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा अपने खेत के, बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं, आप तो गांव में रहते हैं
5: जी।
4: मुझे अपार प्रसन्नता, और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है, और चलते हुए एक गोबर यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया और चली गई, ऐसा होता है ना
5: जी? बिल्कुल।
4: आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना,
5: अच्छा
4: उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे।
5: अच्छा,
4: उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे, ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था, लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया, और उसकी गंध पाकर के धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते हैं ना, जो मैंने बताया
5: जी,
4: और घन जीवामृत डालते हैं, तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है, और जब मरता है तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है, हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, जिस छेद से जाता उसे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता तो वर्मी वो शरीर से छोड़कर छेद को लीपते हुए जाता, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता
5: जी।
4: और धरती में जो खनिज हैं उनको खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम के करता अर्थपन।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: अब जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि एक एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है
5: जी।
4: वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी। और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ है खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बाढ़ आती कैसे है, जमीन को यूरिया डीएपी ने पत्थर बना दिया, सख्त कर दिया, मित्र जीव बचे नहीं, छेद उसमें है नहीं। बारिश बरसती है, पानी तेजी से बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, धरती में जाने नहीं पाता, वाटर लेवल डे बाय डे डाउन आ रहा है।
5: बिल्कुल,
4: तो ये विनाश का रास्ता यूं चल रहा है। दूसरा मिश्रा जी, जब ये तो हुई वर्षा का इलाज, पानी जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और ये पानी भी कैसा है, स्टीलाइज पवित्र वर्षा जल, धरती में जाएगा तो पीने के लिए भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा, हमारा भूगर्भ भंडार जल का भरेगा। जब अकाल पड़ेगा, जून का महीना होगा, लूएं चलेंगी, बारिश होगी नहीं, ऐसे समय पौधा कैसे बचेगा, तो ये जो छिद्र बनाए है ना, जब धरती तपेगी तो नीचे तो पानी है ना, उसमें वाष्प बनेगी
5: जी।
4: जब वाष्प बनेगी तो वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी, अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। और इसका उदाहरण क्या है, जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में करना चाहिए। जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन देता है, पानी कौन देता है, लेकिन समय पर आकर के वो पेड़ फलों से लद जाते हैं। आप जंगल के किसी पेड़ के पत्ते को तोड़कर लैब में ले जाओ और उसको टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब वहां ये नियम काम करता तो वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति जो काम जंगल में करती वही काम खेत में होना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक कृषि है। तो इसका ये इतना बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा हमें खाद बनाते हैं, ये तो जीवामृत है
5: जी।
4: एक है घन जीवामृत, वो क्या है, जब किसान के पास ज्यादा गोबर हो जाए, जीवामृत की जरूरत खेत में ना रहे, तो वो सूखी देसी गाय की एक क्विंटल गोबर की खाद धरती में थोड़ा उसको पीट के बारीक कर ले, उसमें यही चीजें डालनी जो आपने जीवामृत में डाली, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 5-7 किलो गौमूत्र उसमें मिला के, और पशुशाला के कोने पर रख दे, प्लास्टिक से ना ढके, जूट की बोरी से ढक दे, ये घन जीवामृत 6 महीने भी खराब नहीं होता।
5: अच्छा,
4: इसमें जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। जब किसान खेती बीजे तो उससे पहले डीएपी की तरह धरती में इसको डाल दे और उसके बाद बीजे। ये आप ज्यादा कम बढ़ा सकते हैं, कोई खतरा नहीं। 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल दें तो उत्पादन बहुत बढ़ेगा। और जीवामृत जो है, हर पानी जब देता किसान, हर पानी में जीवामृत छोड़ दे और 15-20 दिन में फसल के ऊपर 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर उसका स्प्रे कर दे, तीसरे दिन फसल की रंगत बदलेगी। तो ये 2 तरह के हम खाद बनाते हैं। अब शुरू में जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आएंगे तो धरती की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, धरती बंजर कमजोर हो चुकी है, तो उसमें कीट पतंग आएंगे। उनके निदान के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी, प्राकृतिक कृषि, इसमें पूरा विवरण मैंने दिया है। उसमें नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ऐसे कुछ कीटनाशक बनाते हैं प्राकृतिक। गाय मूत्र में नीम, धतूरा, आग, चिरायता, गिलोय, ऐसी जड़ी बूटियों को पका के रख लेते हैं और उसको पानी में 2 लीटर डाल के, 15-20 लीटर पानी में 2 लीटर डाल के टंकी से छिड़काव करेंगे तो कीट का भी इलाज हो जाएगा। और उसमें जो फंगस वगैरह आती तो खट्टी छाछ, कई कई महीने पुरानी खट्टी छाछ, उसको भी हम पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे को ताकत भी देगी और रोगों से भी बचाएगी। इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों घर में किसान बना सकता है। और जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो बीमारी आनी खत्म हो जाएगी। मेरे 200 एकड़ खेत में कीटनाशक में छिड़कता ही नहीं, ये जो मैंने बताया इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बीमारी आना ही बंद होगी मेरे खेत में और ये जो छिड़काव है ये भी कम हो गए हैं। इतनी जमीन उर्वरक बन गई है कि उसमें मित्र कीटों ने अपना काम इतना कर दिया है कि अद्भुत काम उसमें शुरू हो गया। तो एक तो पद्धति खाद के रूप में तो ये है, जीवामृत, घन जीवामृत। और इसके साथ एक है आच्छादन, मल्चिंग। जब हम फसल बोते हैं तो इस प्राकृतिक खेती में एक तो मल्टी क्रॉप करते हैं, एक ही फसल नहीं बोते, एक साथ हम कई कई फसलें बीज देते हैं। गेहूं बोझ दिया तो बीच में चना बो दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसे हम एक समय पर अनेक तरह की फसल बोते हैं और वो एक अब आगे किसान को लाभ हो गया, मूल फसल बचत में और ये दूसरी फसल खर्चा निकाल देती है उसका, तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और जितना धरती को ढक कर के हम रखेंगे उतना ही जमीन की का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अब ये जो मल्चिंग है वो क्या है, खेत का जो घास फूस है हम उसको आग लगाते, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इसे प्रदूषण भी बढ़ेगा और हमारे जो जीवाणु वो भी मरेंगे, मित्र जीव भी मरेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी अवशेष जमीन में से निकलते हैं उनको काट के जब फसल बो दी, फसल को छोड़ के बाकी खाली जगह है उस पे उसको बिछाओ, उसके कितने जबरदस्त लाभ हैं वो किसान बंधु सुनेंगे। नंबर एक, जब हम धरती को ढक देंगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है और वो आकाश में जाकर के वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और हम उसे मल्चिंग करके ढकते हैं तो वो उड़ने नहीं पाता, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। एक काम, नंबर दो इस मल्चिंग का लाभ है कि 50% पानी आपका बच जाएगा। 50% पानी सारे देश की धरती का निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? जब हम इसको ढके रखेंगे तो ये जो मल्चिंग है ये आकाश में जो जलीय तत्व है उसको खींचती है और ये जमीन को देती है, तो जमीन की नमी जो है ना वो बनी रहती है,
5: बरकरार।
4: किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। और इस मल्चिंग से वो नमी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी वो किसान बंधु इसको भी समझेंगे। आप अपने खेत में कोई फसल काटते हैं और उसका एक गट्ठा बना करके खेत में डाल देते हैं। जून का महीना है, मई जून का महीना, लूएं चल रही हैं, चारों तरफ पानी कहीं है नहीं, तप रही है जमीन। ऐसे मौसम में जो गट्ठा आपका खेत में पड़ा हुआ है फसल का, भार जिसको बोलते हैं, गट्ठा बोलते हैं, वो उस भार को उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। सब किसान इसको स्वीकार, ये नमी कहां से आई जब चारों तरफ सूखा पड़ा है। ये जो मल्चिंग है, अवशेष हैं, ये आकाश के जलीय तत्व को खींच के जमीन को देते हैं। तो पानी की 50% 50% जरूरत ही कम हो जाएगी। दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ,
3: किसान साथियों, हम लगातार खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं। सो किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ छाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तीसरा लाभ इसका यह है कि जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो रात में काम करता है, दिन में नहीं करता। दिन में क्यों नहीं करता? जब वो बाहर आता तो उसे पक्षी उठा ले जाते हैं
2: जी,
1: उसको अपनी मौत का खतरा है। वो इसलिए अंधेरे में काम करेगा, प्रकाश होते ही वो अंदर चुप बैठ जाता है
2: जी।
1: यदि किसान मल्चिंग करता, जमीन को ढकता है, तो वो केचवा जो है रात की तरह अनुभव करके मरने के भय उसका खत्म कर दिया, तो वो फिर रात और दिन काम करेगा।
2: डबल शिफ्ट
1: पे आ जाएगा। डबल शिफ्ट करेगा और वो किसान की जमीन को ऑक्सीजन भी देगा, खाद भी तैयार करेगा, और वो वर्षा जल का नीचे जाने का भी प्रबंध करेगा, और गर्मी में पेड़ को सूखने भी नहीं देगा। ये अद्भुत काम वो करेगा। और चौथा इसका लाभ क्या होगा कि जो जीवाणु हैं, जो हमने गोबर से लिए थे, जिनको खाने के लिए हमने दाल का बेसन दिया था, अब धरती में वो आ गए तो क्या खाएंगे? उनको भोजन तो चाहिए। ये जो मल्चिंग है, घास फूस, ये उसका भोजन है। वो खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, पुष्ट रहेंगे, और इस सारी मल्चिंग को खा के खाद में बदल देंगे
2: जी।
1: इसको भी खाद में बदल देंगे। और अंतिम पांचवा इसका लाभ क्या है, जो किसान बहुत लेबर लगा करके घास निकालता खेत की, इसके बिछाने से खरपतवार पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी
2: जी।
1: वो निकलेगा लेकिन पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा।
2: अच्छा।
1: और ये खरपतवार की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक खेती का दोनों तरफ से इस रूप में लाभ मिलता है। जब हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन, जो जमीन की फर्टिलिटी, वो बढ़ेगी। मैंने अपने खेत में, मेरे दो खेत थे, एक मैं 50, ये 100 एकड़ की मैंने जो बात की है
2: जी,
1: इसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। इसी के साथ बीच में एक पक्की सड़क से इधर हमारा 100 एकड़ का खेत था, जो मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे किसानों को दिया हुआ था,
2: बटाई पे दिया था।
1: ये किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण, इसे सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। वो जो भाड़े पे, बटाई पे मैंने खेत दिया था, मतलब मैं इकट्ठा पैसा लेता था, बटाई पे नहीं कुछ लेता था मैं। मैंने फिक्स किया था कि मैं 30,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, 40,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, और मेरा खेत तुम्हारा हो गया। मिश्रा जी, अब से 3 बरस पहले वो सब किसान इकट्ठे होके आए मेरे पास, और उन्होंने कहा, जी हम आपका खेत नहीं लेंगे।
2: अच्छा।
1: छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे भाई? के जी, इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता, हम तो इसने कर्जा ही बना दिए। मैंने कहा क्यों? के जी, होता ही नहीं पैदा। मैंने कहा मेरे ये खेत और ये तो इकट्ठे हैं, और जब मैंने जमीन दी थी तब नहीं होता था कि, तब तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता।
2: अच्छा।
1: मैंने गांव के और लोग बुलाए, भाई ये लोग सत बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच कह रहे, कुछ नहीं होता इनमें, खर्चा नहीं निकलता इनका। उन्होंने छोड़ दिए मेरे खेत। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर हरिओम की चर्चा की, उनको मैंने बुलाया, मेरे परिचय में भी थे, डॉक्टर साहब किसानों ने मेरा खेत छोड़ दिया, और ये कह करके छोड़ा, इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं इसका? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं इस पूरे खेत के मिट्टी के सैंपल लूंगा और इनको यूनिवर्सिटी की लैब में भेजूंगा
2: जी।
1: वहां से टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा भूमि की क्या स्थिति है। उन्होंने सैंपल ले लिए, सैकड़ों सैंपल लेकर भेज दिए। डेढ़ दो महीने बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा किसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 पाया, किसी का 0.4 पाया, किसी का 0.5 से सब नीचे नीचे था
2: जी।
1: तो उन्होंने कहा जी ये किसान जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस जमीन की फर्टिलिटी खत्म है, इसमें तो यूरिया डीएपी भरकम डालोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कहा क्या करूं मैं, तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज पेन लेके लिखना शुरू किया, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, ये और इसमें जो अवशेष होंगे फसल के वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे सालों में ये बंजर हुई है, ऐसे कई सालों में जाके ये उपजाऊ बनेगी
2: जी।
1: मैंने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय, इतनी जमीन बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा रास्ता आपने बता दिया, मैं तो अपने ढंग से खेत करूंगा, आप क्या करोगे? मैं कहा ये जीव अमृत घनजीव अमृत डालूंगा। डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे महाराज दुनिया बहुत आगे चली गई, साइंस का जमाना है, गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा? साइंटिस्ट मैं हूं या आप हैं? जो मैं कहूं वो करो। मैंने कहा आप वाले कहने से तो ये बंजर हुई है जो इन लोगों ने किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा मैं यही करूंगा जो अपनी बाकी खेत में करता हूं, जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। वो कहने लगे इसे कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी, जमीन आपकी, मैंने अपना बता दिया राय, अब जो करना करिए, और वो चले गए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: मिश्रा जी 3 साल पहले उस बंजर जमीन में मैंने 5-5 क्विंटल घनजीवामृत डलवाया पर एकड़, और उसमें धान की रोपाई की। जब भी पानी देता तो जीवामृत का उसमें घोल छोड़ देता, और 15 दिन बाद जीवामृत का मैंने 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डाल के उसका छिड़काव शुरू किया
2: जी।
1: फसल लहलाने लगी।
2: अच्छा,
1: इतना बढ़िया हरा भरा खेत। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मेरे जानकार थे वो, मैं कहा एक बार आओ आपको करिश्मा दिखाता हूं। तब उन्होंने 2-3 महीने के खेत को देखा, तो उन्होंने कहा खेत तो वही है जिसे सैंपल लिए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी फसल कैसे है? तुमने यूरिया डीएपी डाला होगा? मैं कहा ना, एक बूंद भी नहीं, यही डाला बस। तो उन्होंने कहा जब ये फसल कटे तो मेरे को तोल होगा तो मेरे को दिखाना
2: जी।
1: तो उस बंजर भूमि में पहले साल एवरेज 21 क्विंटल धान निकला मेरा पहले वर्ष।
2: अच्छा,
1: और उसी चीज को मैंने बराबर चलाए रखा। अगले वर्ष उसी जमीन में एक ही साल के अंतर से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकला अगले वर्ष
2: जी।
1: अब वो कहने लगा कि भाई ये हो नहीं सकता, ये तो करिश्मा है। तो उन्होंने एक वर्ष के बाद उस मिट्टी के दोबारा सैंपल लिए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो भले आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, वो जिद्दी नहीं है, और उन्होंने कहा भाई यदि ये है तो ये तो बहुत
2: क्रांतिकारी
1: काम
2: है जी।
1: तो उन्होंने उस पूरी जमीन के दोबारा सैंपल लेके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे और एक दो जगह भेजे, और वहां से फिर रिपोर्ट आई जिस जमीन का एक साल पहले 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में 0.7, 0.8 हो गया।
2: अच्छा,
1: वो कहने लगा हमारी साइंस में तो हो ही नहीं सकता। कभी आज भी पूरे देश का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे नहीं, और वो ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो उनकी सिस्टम तो जीवाणु को मारने का काम करता है, उनका सिस्टम तो केचुए को मारने का काम करता है, मित्र कीट को मारने का काम करता है। जो जीव ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं, वो मार दिए तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा कैसे, वो तो ये काम करते हैं। अब हमने जब ये किया तो इससे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव बढ़ गए, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में 0.3, 0.4, 0.5 से 0.7 और 8 पे गया। तो उसने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो अजीब है। और आश्चर्य उनको तब हुआ जब तीसरे वर्ष उसी में 32 क्विंटल एवरेज से धान पैदा हुआ, 32 क्विंटल। और अभी एक महीना पहले ये अब की साल जो कटा है उन्हीं खेतों में 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जब हमारा धान खेत में खड़ा था, दूसरी फसलें खड़ी थी, चारों एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर हमारे खेत में कुरुक्षेत्र गए।
2: अच्छा।
1: उन्होंने जाके देखा और ये अनुभव किया कि ऐसी फसल प्राकृतिक में हो सकती हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन चारों ने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहां पर भेजे। तो अब मेरी जमीन का, अब उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अब करवाया है तो वो 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर चला गया।
2: अच्छा।
1: 1 से भी ऊपर चला गया। अब स्थिति ये पूरे खेत की हो चुकी है अभी जो किया। इसका एक और अंतिम उदाहरण मैं देता हूं। अब इन साइंटिस्ट में ये देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसमें रोग भी नहीं आएंगे, हमारी जमीन में खुशबू आना शुरू हो गई। अभी पिछले दिनों वही डॉक्टर बलजीत सारन और उन लोगों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग तहसीलों में गए, वो उन तहसील के एक किसान के खेत से मिट्टी ली, दूसरे तहसील के किसान के मिट्टी ली, तीसरे से ली जो रासायनिक खेती करते थे। ऐसे 5 किसान उन्होंने लिए जो रासायनिक खेती करते थे, उनकी मिट्टी लेकर के वो आए और उन्होंने सारी 5 किसानों की मिट्टी को इकट्ठा मिला करके यू मिला लिया और लैब में लेकर रिसर्च किया उस पे, तो उसकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले रासायनिक खेती में। फिर उन्होंने हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लिया 5 जगह से फिर उसको यूं ही मिलाया और लैब में लेके गए तो उसमें 161 करोड़ जीवाणु मिले 1 ग्राम मिट्टी में। हमारी 1 ग्राम में 161 करोड़ और रासायनिक में 30,05,000। अब आप ये साइंटिफिक आधार इससे बड़ा क्या होगा? साइंटिस्ट इस बात को तो मानेंगे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा तभी वो तो फसल बढ़िया देगी। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम मित्र जीव करते हैं, जीवाणु करते हैं, अब रासायनिक तो उनको मारने का काम करती है। और उसके बाद भी इस सिस्टम को जो ना माने तो ये तो किसान के साथ, बेचारे के साथ और लोगों के साथ बड़ी
2: बिल्कुल
1: नाइंसाफी है ना जी। तो ये इतने उदाहरण मोटे मोटे मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, मोटी मोटी जानकारी दी है। और इसका लाभ क्या होने वाला है जो मैं निवेदन करता हूं, कहने को ये प्राकृतिक खेती है लेकिन एक काम से अनेक लाभ और क्रांतिकारी काम क्या होगा, रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है और प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने का काम करती है। हवा हमारे अनुकूल बनेगी, पानी जल जीवन है, ये उसको वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और आज पानी पीने लायक नहीं बचा है, बोतल लिए घूमते हैं।
2: जी जी।
1: प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें जहर नहीं जाएगा तो हमारा पानी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। 2 लाभ। तीसरा, प्राकृतिक खेती से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे और रासायनिक से उनको बंजर जमीन देके जाएंगे। चौथा, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है इसका नस्ल सुधार किया जाए और ये गाय चलती फिरती जीवाणुओं की फैक्ट्री है, यदि ये बचेगी तो इसका ए टू दूध वो तो मानव के कल्याण पीने के काम आएगा और इसका गोबर गोमूत्र कृषि को बचाएगा। इस समय भारत सरकार 125,000 करोड़ रुपया वार्षिक यूरिया डीएपी पे सब्सिडी देती है। इतना बड़ा धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा?
2: बिल्कुल।
1: और ये 125,000 करोड़ नहीं, फिर किसान इसे खरीदता है, ये 200,000 करोड़ का मामला है और पेस्टिसाइड वो अलग है। कितना बड़ा एक चक्रव्यूह
2: बिल्कुल
1: चल रहा है, इससे निजात मिलेगी। और पांचवा इसका लाभ है कि जिस आहार को जहर वाले को खा के अस्पताल भरे पड़े, मैं सब बंधुओं से निवेदन करके पूछता हूं कि जब रासायनिक खेती नहीं थी 50-60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई हाइपरटेंशन को जानता था? ये इतने असाध्य रोग जिनके निदान के लिए अरबों रुपए के मेडिकल बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है,
2: जमीन
1: आदमी बीमार हो करके वहां पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, परिवार दुखी पर बीमार दुखी, ये सारी से मुक्ति का रास्ता इसे मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता करें कि किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, उसकी आय बढ़नी चाहिए, ये वो विकल्प है जो किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। और इसका एक प्रबल उदाहरण, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल में भी गवर्नर रहा, अंतिम 2 साल में मैंने वहां प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। जब मेरे खेत में ये परिणाम आए तो मैंने सोचा इस राजभवन में बैठ के क्या करेगा, इन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, जब एक सिस्टम तूने प्रैक्टिकल कर लिया तो इनका भला होना चाहिए। मैं गांव में घूमना शुरू हुआ और मैंने किसानों को जोड़ना शुरू किया। अंत के 2 साल में मैंने 50,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए।
2: अच्छा।
1: और इसको देख करके प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी रुचि ली और उन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया, उसमें एक आईएएस अधिकारी रखे, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोन सोलन के डॉक्टर राजेश्वर चंदेल साइंटिस्ट इसमें रखे और उन लोगों ने समझ के, और मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ, मेरे आने के बाद 1,00,000 किसान नए जोड़ दिए उन्होंने। अब 1,50,000 किसान लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं जहर मुक्त। और 12 अप्रैल को पिछली जो अप्रैल गई है इसमें चीफ सेक्रेटरी हिमाचल की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने पूछा भाई ये जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं, जो आचार्य देवव्रत चला के गए थे, इसका कोई लाभ हुआ या हानि हुई? तो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए।
2: अच्छा।
1: कि इस खेती करने के बाद जो लोगों ने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है और 56% खेती की लागत कम हो गई। वहां के अमर उजाला अखबार ने इस न्यूज को छापा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: यानी के 27% तो आय बढ़ गई और 56% लागत कम हो गई,
2: वो भी आय बढ़ गई।
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का अभियान चलाया, तो यदि दोनों को जोड़ दें तो डबल की ओर बढ़ गए कि नहीं?
2: बिल्कुल।
1: तो इस खेती में प्राकृतिक में लागत शून्य के बराबर हो जाती और उत्पादन कम होता नहीं, उत्पादन बराबर चलेगा और लागत घट जाएगी तो किसान की आय वैसे ही बढ़ गई।
2: बिल्कुल।
1: अब अंतिम बात मैं करता हूँ, अभी जो मेरे खेत में धान की बात मैं करता हूँ, 33 क्विंटल एवरेज पैदा हुई है और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। अब रासायनिक वाले ने पानी से भी उसको भर के रखा, मैं पानी भी 50% दिया, उसके 10 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, मेरा 1000 रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 33 क्विंटल हुआ। अब और ये चीज जाके मेरे खेत में देख लो, आप वहां की मिट्टी टेस्ट कर दो, हमारी फसलों को जाके देख लो। और मजे की बात ये मिश्रा जी, आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, आज उपभोक्ता को ये पता लगे कि इस उत्पादन में जहर नहीं है तो वो उसे डबल कीमत पे भी लेने को तैयार है।
2: बिल्कुल।
1: और इस समय गुजरात सरकार, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा एग्रीकल्चर, हमारे मनीष भारद्वाज जी जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग, पूरी प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस पद्धति को जनमानस तक किसानों में पहुंचाने का अभियान चलाया। अभी हमने डांग जिला है, इस 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे कृषि सचिव महोदय, आत्मा के डायरेक्टर महोदय, सब ने उस जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। भारत का पहला प्राकृतिक जिला वो होगा,
2: यानी हर किसान प्राकृतिक खेती कर,
1: बिल्कुल, उसमें एक भी किसान नहीं बचेगा। वहां यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी पे प्रतिबंध है, और उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग दिया उनको, 1 हेक्टेयर के लिए 1000 रुपया प्रति एकड़, वो 10000 रुपया प्रति एकड़, हाँ, इतना सहयोग देंगे ताकि उनका मनोबल आए, उनको दिक्कत ना आए, और ये काम शुरू कर दिया। और प्रदेश सरकार ने जो किसान, यहाँ 2 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, और वो जो देसी गाय किसान घर में रखता उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार गाय के रख रखाव के लिए दे रही है। तो ये काम यहाँ शुरू होने से किसानों में एक जागृति आई है। अभी हमने 6 दिन का एक शिविर आज ही संपन्न किया है, इस दिसंबर मास में 3-4 शिविर और लगाने हम जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है और हम किसानों में ये विचार मजबूती से फैला रहे हैं, और हजारों लाखों जो किसान कर रहे हैं उनके जो अनुभव आने लगे बड़े संतोषजनक हैं और वो बड़े उत्साहित हैं। तो ये कृषि जो है हमारी, ये प्राकृतिक है, जैविक नहीं, रासायनिक नहीं है। इस समय हमारे

0: चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रहे आईएएस अधिकारी, वो हिमाचल आंध्र प्रदेश में पिछले 5 साल 7 साल से इस खेती को करवाते हैं। 5 लाख से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने जहां पानी भी नहीं है वहां 3-3 फसल किसानों की शुरू हो गई इस प्राकृतिक इसी पद्धति से। यदि ये सफल नहीं होती तो 1.5 लाख किसान हिमाचल में क्यों जुड़ता?
1: बिल्कुल।
0: यदि ये ना होती तो हमारे गुजरात में क्यों जुड़ता? 7-8 साल से जो आंध्र प्रदेश में करते हैं वो क्यों जुड़ते? जैविक कृषि को 30 साल से हम करते आ रहे उसे कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चे कम होते नहीं। तो जैविक कृषि भिन्न है, प्राकृतिक कृषि भिन्न है। हम प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कृषि को हम बढ़ाकर देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जमीन को फर्टिलिटी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण बचे, पानी बचे, गाय बचे और किसान की आय बढ़े, लोगों को स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद।
1: बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। और मुझे लगता है कि
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे आप स्वतः उनका जवाब देते चले जा रहे थे। मैं मन में मेरे श्रीलंका शब्द आया और आपने लंका कह दिया। तो इतने सरल तरीके से और इतने बहुत लूसिडली आपने बताया, बहुत धन्यवाद इसका। क्या जो भारत जैसे देश में जहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं
0: जी
1: उनके लिए भी इसका अर्थशास्त्र ठीक बैठता है?
0: इसमें मिश्रा जी, छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है।
1: ये
0: कारण क्या है? छोटा किसान वो ट्रैक्टर रखेगा तो बड़ा उसको खर्चा बढ़ेगा। यदि वो गाय रखता है 2-2.5 एकड़ का है तो बैल से करेगा तो मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे। और एक देसी गाय से तो 18-20 एकड़ से भी ज्यादा खेती हो सकती है। उदाहरण के लिए गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी
1: जी।
0: और एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खा तैयार है तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से तो 30 एकड़ का तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो इतना बड़ा उपकारी जीव है कि इसका उपयोग किया जाए तो छोटा किसान मल्टी क्रॉप करेगा, 1 एकड़ में जब 4-4, 5-5 तरह की फसल एक ही दम लेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: और ये जीवामृत घन जीवामृत जितना डालेगा इसका नुकसान ही कुछ नहीं है, इसका तो लाभ ही लाभ, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। और आश्चर्य ये कि मेरे जो अपने खेत है इस साल उनमें केवल 1 बार जीवामृत देना पड़ा हमें।
1: अच्छा।
0: 1 बार वो इतने बढ़ गए कि वो काटने पड़े हमें, पहले पशुओं को खिलाने पड़े, इतनी बढ़ गए वो, उनको खतरा था ये गिर जाएंगे और फल कम आएगा तो काटना पड़ा। इसलिए क्योंकि उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 और 1 से ऊपर चला गया,
1: ऊपर चला गया जी।
0: बीमारी भी नहीं आनी आती क्योंकि वो बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी। अब ये जो कोरोना आया है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग होगी वो लड़ाई लड़ेगा, जो इम्यूनिटी कमजोर हो मर जाएगा। जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है तो उसको बीमारी आएगी नहीं। जी धरती में यूरिया DAP से उसकी जान निकाल दी, बीमारी तो उसमें आएगी। जो एंटीबायोटिक रोज खाएगा वो कैसे बीमारी से लड़ेगा? तो वही स्थिति भूमि के साथ।
1: बिल्कुल। और ये कैंसर जो वगैरह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक इतने सारे, हम में से हर इंसान अपने आसपास किसी ना किसी को जानता है जो इससे जूझ रहा हो या जूझ चुका हो।

0: और ये पिछले 8-10 सालों 10-15 साल की ही
1: इसी की देन है।
0: तो बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो एकदम जुड़ के सेंस उसका।
1: मिश्रा जी, पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। वहाँ भटिंडा एक जिला है
0: जी,
1: वहां से कैंसर ट्रेन प्रतिदिन बीकानेर के लिए चलती है, उसका नाम ही कैंसर
0: एक्सप्रेस। जी,
1: यानी के पूरी भर के चलती, इतना कैंसर पहले कभी नहीं था। तो ये जो खानपान हमारा और स्लो पॉइजन पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी जहर शरीर में जा रहा, उसके दुष्परिणाम।
0: और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, एक ये तो किसान को फायदे हैं
1: जी,
0: और उपभोक्ता को
1: बहुत बड़ा। और इसी के लिए हमारे जो कृषि सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग है, वो बराबर इस मिशन पे लगा है। अब हमने लगभग 100 FPO बनाए
0: जी,
1: और एक FPO में 300 किसान जोड़ दिए। अब जो छोटा किसान है 2-2.5-4 एकड़ का, वो अपना उत्पाद बेचने जाता, बड़ा उसको दिक्कत आती है। अब 300 किसान एक तरह की फसल इकट्ठी बेचेंगे तो उसका भाव उचित मिलेगा, उसकी जो पैसा मूल्य मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। तो इस दिशा में भी लगातार प्रयास हैं, अनेक जगह संपर्क बनाते जा रहे हैं ताकि इसका किसानों को उचित दाम मिले और उनकी मार्केट की व्यवस्था बढ़िया बन सके। इस पे भी बराबर काम चल रहा है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।
3: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही आपने जाना कैसे एक गाय जो हमारी देसी गाय है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और जो प्राकृतिक खेती है और जैविक खेती है इससे हमें कैसे लाभ लिया जा सकता है, जैसे आपने जीवामृत और आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पता चला है। साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी किसान भाई प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ अपना रुख करेंगे और अपनी खेती को, अपनी आजीविका को सशक्त बनाएंगे। इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, झाबुआ की आवाज़।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, जहाँ हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि मूल्यों, अध्यात्म और जीवन दर्शन की होती है। आज हमारे साथ हैं अंशुल उदय उलाल जी, जिनके जीवन में परंपरा और प्रगति दोनों का एक सुंदर सा संगम देखने को मिलता है। मैंगलोर के उलाल से जुड़ी सांस्कृतिक जड़ों और बेंगलुरु के डायनेमिक माहौल में पली बड़ी सोच ने उन्हें एक अनोखा नजरिया दिया है। प्रोफेशनली अंशुल जी एक बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजर सर्विस एक्सलेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही भाला चंद्र नेकन कट्टे ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में समाज सेवा और चैरिटेबल इनिशिएटिव से भी जुड़े हुए हैं। पर उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, आध्यात्म, गुरु भक्ति, सेवा, विनम्रता और जीवन के उच्च मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना ही उनकी असली पहचान है दोस्तों। तो आइए स्वागत करते हैं अंशुल जी का। तो अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग के स्पेशल प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
2: बहुत अच्छे, थैंक यू
1: जी। चलिए शुरू करते हैं सर आपके आइडेंटिटी से, आपकी शुरुआत से। बहुत सारे लोग आजकल अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनालिटी को अक्सर अपने प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, प्रोफेशनल लाइफ, अचीवमेंट्स, इन सभी से जोड़ते हैं, और आपने इतना कुछ जीवन में अचीव किया है पर्सनली, सो आई एम श्योर वो आपके लिए बहुत एक प्राइड का मैटर है। बट अगर आपसे कहा जाए कि आपकी पहचान बिना जॉब, बिना ट्रस्ट की जो आइडेंटिटी है, फैमिली बैकग्राउंड, इन सभी को हटा के अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे सर?
2: जी तनुषा जी, सुपरफिशियली बोलूं तो अंदर से स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल और सेवा और निष्ठा से ग्राउंडेड, पर बाहर से मॉडर्न लाइफस्टाइल, हंसी मजाक, म्यूजिक और सेवा में रुचि रखने वाला। तनुषा जी, आपने तो पहले ओवर में और पहले बॉल में यॉर्कर डाल दिया। ये सवाल जब आपने पूछा तो एक प्रसंग मुझे मन में आता है जहां पर रावण जी ने हनुमान जी को पूछा था कि कौन हो आप, तो हनुमान जी बोलते हैं दासो हम रघुनाथस्य, मतलब मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। तो ऐसे जब डिफाइन होता है तब इस तरह माता पिता, गुरु और भगवान का सेवक कहना चाहूंगा, जिसे इस जन्म में कुछ लक्ष्य दिए गए हैं और उसी शक्ति की कृपा दृष्टि से ये सब लक्ष्य प्राप्ति करने के का मार्ग भी क्लियर होता जा रहा है, और उसमें जो मेरे प्रयत्न है उसमें भी राह दिखाकर, कोर्स करेक्शन, अच्छे परिवार, दोस्तों और समाज इस सफर में काफी हद तक प्रोत्साहित भी करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी हैं जो सही राह भी बताते हैं।
1: बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया, और मैंने सबसे पहले आपसे ये इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने आपकी अभी प्रोफाइल पढ़ी, जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, तो मैंने रियलाइज किया कि आपने इतना कुछ, जैसे मैंने कहा, अचीव किया है पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली। तो मैं बस जानना चाहती थी कि क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअली अलाइन हैं, तो क्या ये चीजों से आप अपने आप को जोड़ते हैं या इसके अलावा आप अपनी कोई आइडेंटिटी भी मानते हैं? तो आई थिंक दैट इज व्हाट वॉरंटेड माय फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं सर। जीवन में स्पिरिचुअलिटी और प्रोफेशनल एक्सलेंस दोनों ही आपके साथ चले हैं, हमेशा हाथ में हाथ डाल के, जो जिस तरह का आपका लाइफ रहा है। तो क्या कभी ऐसा कोई पल आया जब जो कॉर्पोरेट दुनिया है वो इतनी लॉजिकल है, इतनी डिफिकल्ट है, इतनी टफ है और इतनी टैक्सिंग है, और उसके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं आध्यात्म से, तो कभी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नजर आया कि आप ऐसे राह पे खड़े हो गए कि अब क्या करूं, किसको चुनूं, और उस समय आपने किसकी सुनी, क्या किया?
2: जी तनुषा जी, तो ऐसा कई बार हुआ है। तो हमारे स्कूल में जो विद्यानिकेतन स्कूल है बैंगलोर में, वहां पर श्रीमद् भगवद गीता के क्लास हुआ करते थे। तभी हमें ये स्थित प्रज्ञ श्लोका करके एक चैप्टर टू में श्लोकाज हैं जो हमें समझाए गए थे। अभी इन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो उसमें संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। तो ये जो स्कूल में सिखाया गया था आज भी काम आता है। तो इसके बाद हमारे जो श्री चित्रापुर मठ के मठाधीश हैं श्री मठ सद्योजा शंकर आश्रम स्वामी जी, हमारे कम्युनिटी में काफी सारे शिविर करते हैं जहां पर अध्यात्म, कॉरपोरेट, मॉडर्न लाइफस्टाइल में अपना अध्यात्म कैसे उसको अप्लाई करे इसका भी सीख मिलता है। तो उसमें सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का अर्थ पढ़ाया गया था, जो जिसका मतलब है कि जो सच है और जो सुनने में प्रिय है उसको बताना ही अच्छा होता है, और वही सनातन धर्म है। तो जब हम लोग कॉरपोरेट दुनिया का लॉजिक और अध्यात्म की आवाज आमने सामने हो तो माता पिता के दिए हुए संस्कार याद आते हैं, और इसी शिक्षा को जब मनन चिंतन करते हैं तो एक बीच का रास्ता लेने को हमें प्रेरणा देती है, जहां पर सही करने का जज्बा हो और कॉर्पोरेट दुनिया का लॉजिक दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य में आगे बढ़ के एक रणनीति में परिवर्तित हो जाए जहां सबका विजय हो। तो जब सब साथ में काम करते और सबका विजय होता है तो उसमें मजा ही और कुछ अलग होता है। तो हमेशा वही लिव बाय एग्जाम्पल काम करता है और वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ।
1: क्या बात है। तो सार बेसिकली ये है कि आप मिडिल पाथ अगर अपनाएं जिसमें सबका भला हो, सब खुश रहें, तो वो आई थिंक इज द आइडियल वे ऑफ लाइफ। एम आई राइट?
2: जी
1: जी जी। अब सर इन्हीं बातों के बीच सबसे पहले हम आपका आज का पहला फरमाइशी गीत सुनेंगे जो बहुत ही खूबसूरती से लता मंगेशकर जी ने गाया है, तुम आशा विश्वास हमारे। क्योंकि आपने कहा आप म्यूजिक से जुड़े हैं, तो मे बी प्रोग्राम के अंत तक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी आपकी पसंद का एक गीत गुनगुना दें अगर आप चाहें तो। फिलहाल हम ये सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत गीत, तुम आशा विश्वास हमारे, लता मंगेशकर जी की खूबसूरत और गहरी आवाज़।

0: विश्वास से भरा हुआ ये गीत हमने सुना। थैंक यू सो मच अंशुल जी इस खूबसूरत गीत की, इस खूबसूरत भक्ति गीत की रिक्वेस्ट करने के लिए, थैंक यू। आगे चलते हैं। आपने कहा कि गुरु और ईश्वर इन दोनों ही पे आपकी आस्था हमेशा रही है और हमेशा एक अटल आस्था रही है। तो अगर आपको जीवन मौका दे कि आपके गुरु से या आपके ईश्वर से आपको ये एक सवाल पूछ सके, तो वो क्या सवाल होगा और क्यों?
1: बहुत अच्छा सवाल है तनुषा जी। जब ऐसा मौका जब आते हैं तो हम और आगे कैसी उनकी सेवा करें, ऐसा एक सवाल मन में आता है कि उनका और सेवा करके उसका पुण्य कैसे कमाएं। सवाल उधर किया जाता है जहां पर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन गुरु और भगवान उनको पता है कि कब और क्या उपलब्धि देनी है, कैसी कोर्स करेक्शन करनी है और अपना जो जीवन चल रहा है उसको सही दिशा कैसे देनी है। तो हम क्या मांगे और कौन है मांगने को, ऐसा मेरी सोच है। आदेश के साथ उसको पूरा करने का आशीर्वाद मांगते हैं उसको, और सबको सुख शांति और पूर्णता का एहसास यही मांग सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सवाल तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पापा बोलते थे कि जब हम मंदिर में जाते हैं और दर्शन के बाद हम जब बाहर आने से पहले हमें वो प्रांगण में बैठने को कहा जाता है, जब हम वहां पर बैठते तो उस समय एक प्रार्थना है जैसा अनायासेन मरणम विना दैनीन जीवनम। तो पापा बोलते थे कि ये जब हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान को, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है जहां पर भगवान को सब चीजें मतलब अच्छा जीवन, अच्छा अंत और उनके चरण में ही जगह, ऐसा प्रार्थना इस मंत्र में बोला जाता है। एक प्रार्थना है वहां पर जो हम करते मंदिर में, तो वही सबसे बढ़कर रहता है और उससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकते करके पापा बोलते थे।
0: वाओ, ब्यूटीफुल। और एक एक तरह से कंप्लीट सरेंडर का भाव है इन बातों में।
1: जी जी,
0: बिल्कुल सरेंडर करें और भगवान पे विश्वास रखें। ही इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू और वो आपको कैरी करते हैं लिटरली अपने हाथ में।
1: एब्सोल्युटली, सुख हो तो सुख और दुख हो तो उसमें शक्ति, उसको उसको सामना करने का शक्ति भी वो ही देते हैं।
0: बिल्कुल, और कोर्स करेक्शन भी जैसे आपने कहा कि वही करते हैं, वही डिवाइन है, वही पावर है। खूबसूरत सर जी। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया और मैं जैसे मैंने आप

0: से जितना कॉरेस्पॉन्डेंस किया है इस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने फील किया कि आप एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही मेटिक्यूलस एम्प्लॉई हैं। इसीलिए शायद आज आप बिग फोर कंपनी में एक सीनियर मैनेजर की पोजीशन में हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत प्राइडफुल बात है। इसके अलावा आप भालाचंद्रन नेकनकट्टे ट्रस्ट में भी मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में सामाजिक सेवा से जुड़े रहते हैं। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सबको नहीं प्राप्त होती हैं। और बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे, बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जब शायद आपको ऐसा लगा होगा कि ये मैं हूं। बट मैं सबके बीच में ये पूछना चाहती हूं कि इन अचीवमेंट्स, इन अवार्ड्स, इन डेजिग्नेशंस या टाइटल से नहीं जुड़ी हुई कोई एक ऐसी कहानी, कोई एक ऐसा पड़ाव है आपके जीवन का जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो इन सब उपलब्धियों से ऊपर लगता है आपको?
1: जी, तो जब मैं स्कूल में था और जब हमारे जो पूर्वजों का घर है हमारे उल्लाल में, तो वहां पर हम जाते थे क्वाइट फ्रीक्वेंटली। और वहां पर जैसे डेवलपमेंट होता गया, वहां पर जो रीति रिवाज रिवाइव होते गए, तब ऐसा लगता था कि ऐसे सब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनको सीखना है, उनको आगे लेके जाना है, जो भी सेवा है वैसा करना है। तो जब पापा की गुजर जाने के बाद लास्ट अगस्त में परिवार और परंपराओं की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, लेकिन मेरे ऊपर बोलना चाहूंगा तो इसमें जैसे मैंने बोला कि भगवान देते भी हैं और कुछ चैलेंजेस रहते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी शक्ति वही देते हैं। तो इस बिग फोर में ऐसा पद मिलना सब भगवान का आशीर्वाद समझता हूं कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद भी श्रम के फल में रूप में मिला मुझे। और अब हर बार जब उल्लाल जाता हूं तो वहां पर जो दैविक शक्तियों और पूर्वजों की पुण्य भूमि में सेवा करता हूं तो एक बहुत निराली सी सुकून मिलती है। मेरे पापा का जीवन काल में बहुत ऐसे मौके मिले हैं जहां उनको देखकर मुझे ऐसा लगा है कि अगर मैं इसका 10% भी कर सकूं तो ये जन्म मेरा सार्थक होगा। इतने बहुत अच्छी चीजें वहां पर हुई हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलना चाहूंगा तो वहां पर हर साल एक यात्रा होता है। यात्रा मतलब जहाँ पर दैविक शक्तियां हैं उनको उत्सव और एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जहाँ पर वो भक्तों को आके बाहर गर्भगुड़ी से बाहर आके आशीर्वाद देके वापस गर्भगुड़ी में जाते हैं, ऐसा होता है।
0: जगन्नाथ जैसा? जी
1: जैसे रथ यात्रा होता है ऐसा ही होता है। लेकिन वहाँ पर दैविक शक्ति बाहर आके सब भक्तों को परिहार आशीर्वाद देके वापस गर्भगुड़ी में विराजमान हो जाते हैं। तो वो यात्रा जब आयोजन करते हैं तो उसमें आर्थिक व्यवस्था की भी जरूरत होती है। और इतने साल में जब हम लोग देख रहे थे तो आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़के लेके जाने के लिए बहुत चैलेंजेस होता था, जहां पर डेफिसिट बैलेंस होता था, जैसे तैसे मैनेज करके जाते थे। लेकिन इस साल जब सेवा करने का मौका मिला तो वहां हमने ये देखा कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। मतलब थोड़ा हम लोगों को पॉजिटिव बैलेंस मिलना चालू हो गया। तो ये सब वहां पर हमारी देवी है अप्पे उल्लाल टी करके। आपको रेडियो एसएन के एक इंटरव्यू में शीला नागरकट्टी जी ने बोला था, जो मेरी बुआ है, तो उन्होंने भी बोला था। तो उनकी शक्ति का मैं आई'd लाइक टू गिव दैट क्रेडिट और गिव माय ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। तो उसने उन्होंने अपने जो देवस्थान में उसमें मुझे एक किताब है वहां पर जो शान भोग और शेनरे जैसे बोलते हैं, तो वो भी आशीर्वाद के रूप में दिया वो पद। तो ये सब जब देखते हैं तो उनका यात्रा जो हुआ वो भी और शानदार स्तर पे हुआ, तो वहां पर एक 80 साल के बुजुर्ग हैं वो देवस्थान में जो टेंपल में, तो वो बोलते कि, और ये शायद उनका 50 या 60 साल का उनका एक्सपीरियंस है वहां पर सेवा करने का, तो वो बोलते हैं कि इतने साल में इतने विलक्षण रूप पे और इतने ग्रैंड स्तर पे उन्होंने वो यात्रा नहीं देखा। तो जब ऐसा कोई बुजुर्ग बोलते हैं कि मतलब ऐसा दिखने को आया और इसमें देवी का आशीर्वाद मिलता है, तो एक बहुत निराली सी फीलिंग आती है कि माँ ने मुझे चुना और मुझे राह दिखा रही हैं। और वहां पर जो मदराय करके वराह ही शक्ति है, वराह लक्ष्मी, वराह अवतार, जो विष्णु जी की वराह अवतार है, लक्ष्मी लक्ष्मी जी है उसमें, तो उनका भी हमारे घर में संचार है और उनका आशीर्वाद भी, उनका मार्गदर्शन होता है। तो ये जो आपने जैसे बोला टाइटल्स वगैरह, वो कभी हमारे सक्सेस हमारा सक्सेस है करके वो कभी फीलिंग नहीं आता है। भगवान ने दिया और भगवान करवा रहे हैं और भगवान लेके जा रहे हैं करके वो वाला फीलिंग आता है।
0: बहुत ही खूबसूरत, मैं सच में बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस भाव से आपके, आपका जो कंप्लीट सरेंडर है वो अगर एक इंसान इस लाइफ में शायद इसका अंश भी सीख जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत इजीली अपने आप को कैरी थ्रू होने देंगे। अपनी उपलब्धियों में भी आपके अंदर नाज नहीं आएगा, आप एरोगेंट नहीं होंगे और अपने फेलियर्स में भी आप बिल्कुल डाउन नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल गिव अप नहीं कर देंगे, एंड यू विल नो कि आपको भगवान कैरी कर रहा है, आज नहीं तो कल आप ऊपर उठ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। मैं चाहूंगी कि कभी मैं उलाल आऊं तो इस यात्रा के समय आऊं और मैं ये देख सकूं, फील कर सकूं माँ की वो पार, बिकॉज मैं भी माँ में बहुत विश्वास रखती हूँ, सभी नवरात्रे रखती हूँ। तो बहुत ही गहरी और बहुत ही आध्यात्मिक बातें आपसे हो रही हैं। इसी के बीच आई एम सॉरी, हमारी पूरी एस एन रेडियो टीम की तरफ से वी कन्वे अ लॉट ऑफ कंडोलेंस टू यू फॉर द लॉस ऑफ योर फादर। आई एम श्योर वो जहां पे भी हैं, ही इज लुकिंग एट यू एंड ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, जिस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग है। इट्स ब्यूटिफुल टू सी यू टॉक एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड हेवनली यू नो happiness to your father, the departed.
1: Thank you, Tanusha ji. तो इसमें actually एक तो आपका you know रित पूर्वक स्वागत है उड़लाल और यात्रा में भाग लेने का, आपके आपका और आपकी पूरी टीम का। और दूसरा जो आपने बोला कि पापा देख रहे हैं, मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है जो जब वहां पर काम करता हूँ या जब यहाँ पर भी कुछ थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं कि कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो उनका एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आता है, एक वाइब और इंस्पिरेशन, जैसे बोलते गॉड्स इनविजिबल हैंड बोलते हैं और पिता तो पहले गुरु बोलते हैं, माता
0: पिता तो सूर्य।
1: तो उनका जो इनविजिबल हैंड है वो दिखता है और हर कार्य में मैं उनको समर्पित करके उधर अच्छा होना चाहिए, परिवार साथ में होना चाहिए और साथ में प्रेम भाव से हमें सेवा करना है करके मेरा हमेशा प्रार्थना रहता है। तो आपने बहुत करेक्ट वाइब हमारा पकड़ा है। थैंक यू सो मच।
0: बिल्कुल सर, मैं ये फील कर सकती हूँ क्योंकि आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर इन 2020 और इट्स ओके एंड मैं हर समय उनका प्रेजेंस फील करती हूँ, हर समय उस रोशनी की कभी तो कमी फील करती हूँ और कभी ऐसा लगता है कि वही है जो मुझे आगे लेके जा रही है, वही रास्ता दिखा रही है। बहुत डीप और बहुत गहरे एहसास होते हैं ये माता पिता को खो देना और फिर उनकी प्रेजेंस को अपने जीवन में हमेशा फील करना, और बहुत ब्लेस्ड हैं हम कि हम वो कर पा रहे हैं। इन्हीं बातों के बीच हम सुनेंगे आपका अगला फरमाइशी ब्यूटीफुल गीत। अगेन ये भी एक भक्ति गीत है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, अनूप जलोटा जी की आवाज में।

0: बहुत ही सुंदर गीत। एक बार फिर आगे चलते हैं सर। अगर
1: जी
0: आपके जीवन को एक मंदिर माना जाए, तो आपके हिसाब से उस मंदिर के चार स्तंभ कौन से होंगे, जिन पर चल के, जिन पर अपना एक अपनी एग्जिस्टेंस खड़ी करके एक अर्थपूर्ण और एक संतुलित जीवन टिक सकता है और जिया जा सकता है।
1: कितना खूबसूरत सवाल है तनुषा जी। मैं वही सोच रहा था कि जब आपने ये सवाल ड्राफ्ट किए, तो आपको कैसा वो पल्स मिला होगा। ऐसे सवाल आज तक शायद किसी ने नहीं पूछा, और मैंने जवाब देने का भी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि ये बहुत पर्सनल पर्सनल सवाल है। लेकिन थैंक यू सो मच पूछने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में ये बाहर आके थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस जब होता है तो बहुत काम आता है हमारे इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। तो जिंदगी एक मंदिर ही है जो सफर हम लोग तैर करते हैं यहाँ पे। तो चार स्तंभ अगर मैं सोचूंगा तो एक है सेवा भाव, माता पिता गुरु और भगवान। जो मंदिर में भगवान होते हैं, तो माता पिता गुरु और भगवान, और माता पिता गुरु भगवान की ही स्वरूप है, और गुरु हमारे मठ में गुरु हैं, भगवान हैं, उनकी सेवा करना। श्रद्धा, तो हर कार्य को समर्पण के रूप में देखना, मतलब हम लोग कर रहे हैं, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान करवा रहे हैं, माता पिता करवा रहे हैं, उनका आशीर्वाद करवा रहा है। जो भी उसमें त्रुटियां हैं, उनसे सीखना हमारा काम है। जो लेकिन उसका जो श्रेय मिलता है, उसको भी उनके लिए समर्पण करना, वो बहुत मायने रखता है। संतुलन, और पुराने और मॉडर्न लाइफस्टाइल में बैलेंस। आजकल आप देखोगे बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल होने लगा है, जहां पर अपना हम स्कूल में बात करते थे पुरातन ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा एक निबंध हुआ करता था, ऐसे लिखते थे हम लोग उसके ऊपर। तो उसमें संतुलन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो भारत की संस्कृति है, संस्कार है, हमें बहुत ग्राउंडिंग रखते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें सक्सेस भी देता है। तो उसमें जैसे मैंने स्थितप्रज्ञ श्लोका के बारे में बोला था, उसमें संतुलन एक डिप्लॉय करने का बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है। साधना चौथा स्तंभ। सो लक्ष्य प्राप्ति और मेहनत, नई चीजों को सीखने का जज्बा, और खुद को दूसरों की सहायता में उपयोग करना, ऐसा साधना के अंश होने चाहिए। और स्कूल में एक प्रसिद्ध कबीर के दोहे सिखाए गए थे, जिसमें वो बताते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसमें आप देखोगे तो पहले मैं भी भूखा ना रहूं आता है। तो खुद को पहले बुलंद कर दो, और उसके बाद कोई भी आपके दर पे आए वो भूखा नहीं जाना चाहिए, संतुष्ट और संतोष होके निकलना चाहिए, ऐसा सेवा भाव होना चाहिए। ये दो चीजें ये दोहे में दिखने को मिलता है। तो ये सब जो सीखा है वो सब इम्प्लीमेंट करने का ऐसा जज्बा होता है।
0: बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही नुएंस्ड आंसर था ये, और इसमें सब कुछ आ गया एक तरह से। जिस तरह से आपने उस श्लोक की बात की, वो श्लोक ही सब कुछ, आई थिंक गागर में सागर जैसी बात हो गई है, कि सेवा भी हो, साधना भी हो, संतुलन भी हो, और ऑफ कोर्स आपकी जो श्रद्धा है वो भी हो।
1: जी।
0: बहुत ही खूबसूरती से आपने आंसर किया, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप खुद नहीं भरे हुए होंगे तो आप कभी भी एक एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी आएगा, आप उसकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप फुलफिल्ड हैं, आपके पास कुछ है देने को। तो
1: जी।
0: बहुत ही

0: खूबसूरती से आपने बताया कि कैसे साधक बने, कैसे संतुलन में जिए श्रद्धा के साथ, और बहुत ही खूबसूरत आंसर। चलिए
1: थैंक यू
0: इन्हीं बातों के बीच हम सुनेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत गीत, जो मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, फिल्म मेरा साया।

0: क्या बेहतरीन गीत है ये सच में। आगे चलते हैं सर
1: जी।
0: आप सेवा और चैरिटी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं जैसे कि हमने जाना, आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। तो हम बहुत बार सोचते हैं जैसे आपने कहा कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अहंकार आ जाता है या एक एक एक वो एक यू नो एक फीलिंग आ जाती है कि मैंने इसकी मदद की। हम भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ एक साधक था, एक सोर्स था, एक एक इंस्ट्रूमेंट था भगवान के द्वारा चुना हुआ, और हम सोचते हैं कि मैंने इसकी जिंदगी बदल दी। बट मैं उलट करके ये पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ इतने लोगों की सेवा में, इतनी चैरिटी में, कि किसी एक व्यक्ति की हेल्प करने में, उसके साथ उसकी सेवा करने में आपकी जिंदगी बदल गई?
1: जी, हम जब सेवा करते हैं तो जैसे आपने बोला कि हम किसी की और की जिंदगी बदल रहे हैं, हम किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते। हम सब अपने अपने जो कार्मिक साइकिल हैं वो फॉलो करते हैं। मेरा ये मानना है कि हर लाइफ टाइम एक बैलेंस शीट की तरह होता है। जब तक बैलेंस क्लियर नहीं होता तब तक प्रोग्रेस नहीं होता। तो इस सफर में कुछ लोग हमारे जीवन में सुख लेके आते हैं या उसको चैलेंजिंग बनाने के लिए आते हैं। हम उन्हें कैसे हैंडल करें वो मायने रखता है। सो हम सब एक दूसरे के लिए एक निमित्त मात्र हैं। और दोर तो उस मालिक के हाथ में है जो अनंत रूप और लेके और अनंत सूत्रों से ये दुनिया चलाते हैं। तो सेवा भाव में निमित्त मात्र होने का एक ग्रेटिट्यूड होता है कि भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है हमें। सिर्फ योग्य लोगों को ऐसा आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा कई बार मन में आता है। तो पापा का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर सबसे ज्यादा रहा है क्योंकि ये जो ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी थे उन्होंने ये ट्रस्ट को चलाया है इतने साल। और उन्होंने काफी हद तक, मतलब मैं अभी जब मैनेजिंग ट्रस्टी होके फिर मैं वो फाइल सब देखता हूँ तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसे यू नो संस्थाओं के साथ हम लोग जुड़े जहाँ पर हम लोग सामाजिक सुख और एड्स हम लोग जैसे हेल्प करने की जो यू नो प्रोग्राम्स है उसमें हमने सहायता की है। मतलब ट्रस्ट के द्वारा और भगवान ने हमें वो मौका दिया है ऐसा किसी का जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारा एक छोटा सा योगदान सेवा के तौर पे, लेकिन वो भी देने का आशीर्वाद भगवान ने ही दिया है। तो ऐसा मुझे ऐसा जब ये सब पढ़ता हूँ तो ये मन में आता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सच है कि भगवान ही वो मौका देता है। हम सच में सिर्फ एक निमित्त हैं, एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो भी भगवान सबको नहीं देता जो योग्य हैं, जिनको उनको पता है कि इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल वो सच में उस कार्य के लिए करेंगे, उन्हीं को मिलता है। और ऑफकोर्स कुछ पुराने कर्म होते हैं आपके अच्छे संचित, जिनकी वजह से आप आज वहां हैं जहां हैं। तो आगे चलते हैं सर, उलाल के बारे में आपने बहुत बार मेंशन किया, ये आपकी नेटिव प्लेस है मैंगलोर में
1: जी।
0: तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या उलाल से जुड़े हुए कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें आपको एकदम डिवाइन प्रेजेंस फील हुआ हो, या इनर अवेकनिंग हुई हो, या बहुत गहरे आध्यात्मिक एहसास महसूस किए हों आपने?
1: बहुत सारे हैं। तो उलाल जैसे आपने बोला कि आपकी नेटिव जगह है, मैं तो कहना चाहूंगा कि ये मेरे पूर्वजों की पुण्य भूमि है। तो जहाँ पर उन्होंने कितना श्रम करके उसको सींचा है और वहां पर जो एक टेक्सचर होता है ना, हर जगह का एक टेक्सचर होता है। तो वहां पर जब आप टेक्सचर देखोगे तो वहां पर बहुत स्पिरिचुअली हाई जगह है वहां पे, जहां पर भगवान का प्रेजेंस और इनर अवेकनिंग तो बहुत फील होता है, वहां के वाइब्रेशंस जो है वैसा। तो यहाँ पर थोड़ा अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो ये एक इंटरव्यू काफी नहीं रहेगा, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन मेनली अगर मैं बोलना चाहूंगा तो जैसे मैंने आपको बोला ये इंटरव्यू में कि हमारे घर में वराह लक्ष्मी जो मल रहा है, वराही शक्ति है उनकी, उनका संचार है। तो जब हम लोग घर को रेनोवेट कर रहे थे पूरा रेनोवेट कर रहे थे. फाउंडेशन में हमें तीन मैंगलोर साइड पे ना जब पानी गर्म करते हैं स्नान करने के लिए, उसको भाण बोलते हैं अपने कोंकणी में. भाण करके एक बर्तन जैसा होता है जो गर्म करते हैं पानी उसमें. तो ऐसे तीन तीन बड़े बड़े मतलब ऑलमोस्ट 4-5 फीट के ऐसे बर्तन हमें मिले थे जिसपे जिनमें विभूति था.
0: वाओ.
1: तो वो विभूति किसी पूर्वज का मतलब अस्थि है कि विभूति है, पापा को समझ में नहीं आया. तो हमने उसको फाउंडेशन में मिक्स करके घर बना दिया था. ठीक है. तो जब ये हुआ तो हम जब सब डिसमेंटल कर रहे थे तब एक हमें एक लकड़ी का प्लैंक मिला था. ठीक है. तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये क्या है. कुछ डोर हो सकता है, कुछ शेल्फ हो सकता है, ऐसा कुछ रहेगा करके साइड में रखा था. तो घर बनने के बाद वो जब यात्रा हुआ तब वो वाराही शक्ति श्री मलराय जो हमें मातृ स्वरूपिणी हम लोग ऐसे सोचते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो मेरा झूला है. तो मैं उस पे बैठती हूँ तो उसको पुनर्स्थापित करो करके.
0: क्या बात है.
1: तो हमने वहाँ पर उसको स्थापित किया. स्थापित करने के बाद उसका जीर्णोद्धार हुआ 3 साल पहले. तो जब 3 साल पहले जब हमने किया था तब उसमें प्रश्न वो जो शेल्स के द्वारा लगा के हमें पता चलता है कि क्या क्या करना है, विधि विधान क्या है, वो सब हमने पता किया. तो उसका सूत्र वापस अप्पे उल्लाल्टी के दरबार में और देवस्थान में जाके वहां पर प्रसाद लेने को बोला गया था. तो हम लोग जब वहां पर गए लेने के लिए तो अप्पे उल्लाल्टी पूछती हैं, तो वहां पर जैसे पुजारी हैं उनको देवी का मतलब वो आके बात करते हैं ऐसा. तो अप्पे उल्लाल्टी, अप्पे मतलब माँ तुलु में, तुलु भाषा में. तो अप्पे उल्लाल्टी जो देवी है उन्होंने मुझे पूछा कि जैसे पहले था वैसे करोगे क्या करके. तो मैंने उस टाइम बोला करने और करवाने का तो आपका आपकी शक्ति का स्वरूप है. मैं तो सिर्फ सेवा के लिए खड़ा हूँ. आप जैसे बोलते हो हम लोग वैसे करेंगे. आपका अनुग्रह चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है आप जैसे बोलोगे हम लोग वैसे करेंगे करके. तो उन्होंने संपूर्ण आशीर्वाद देके अभी वहां पर बहुत सारा अच्छा एक वातावरण हो गया है. यात्रा होता है, सभी साथ में आके सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है. और वहां पर हमारे घर के बाजू में एक सीताराम देवस्थान करके राम जी का मंदिर, तो उसका जब पापा रेनोवेशन कर रहे थे 2018-19 के आसपास की बात है ये, जब वो बना रहे थे तो उसमें एक क्या बोलते हैं, एक मंकी एवरी डे आता था.
0: बताइए.
1: एवरी डे आता था और वहां पर बैठ के देखते थे और हमें ऐसा लगता है कि वो हनुमान जी हैं करके.
0: हाँ बिल्कुल.
1: ठीक है. हम लोग मतलब मैं बंदर या मंकी बोलने के लिए मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी ही आए थे वहां पे. और ताज्जुब की बात है कि हमने इतना कोशिश किया है कि फोटो लेने के लिए, लेकिन जब फोटो लेते थे वो वहां पर नहीं दिखते थे.
0: बताइए.
1: जब कैमरा नहीं है तब आके सब देखते थे, ऐसा होता था. और फिर एक दिन हमने प्रार्थना की कि हमें हम लोगों को बोल रहे हैं कि आपका आगमन यहाँ पर हो रहा है तो आप एक फोटो का अवसर दीजिए करके हमने जब वहां पर प्रार्थना की तो एक फोटो मिला हमें कि वो वहां पर आके बैठे और हमने लिया था एक फोटो. ऐसा होता है. तो वहां पर महसूस कर सकते, शब्द जो है वो वहां का एक्सपीरियंस बताने के लिए बहुत कम है. मतलब यू हैव टू लिव इट टू फील इट बोलते हैं ना वैसा. वहां पर आके जब सेवा करते हैं वहां पर जो शक्ति है उनका अनुभव होता है तब पता चल जाए कि इनर अवेकनिंग कैसे कौन से स्तर पे हो सकता है वहां पर, ऐसा पता चलता है.
0: क्या बात है. इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ की वाइब्रेशंस होंगी, मैं सोच सकती हूँ सर। एक सैंडलवुड पेस्ट का भी किस्सा आपने मुझे बताया था, अगर वो भी
1: जी श्योर श्योर श्योर। सो वहाँ पर अप्योरिटी के देवस्थान में एक सैंडलवुड पेस्ट देते हैं, चंदन का पेस्ट, जैसे हम लोग साउथ इंडिया और अपने पूजा में गांध बोलते हैं, यूज करते चंदन की थिंग्स। सो वो जब देते तो उसमें संजीवनी शक्ति करके है, तो ऐसा मानना होता है। सब सीताराम देवस्थान में भी जो हनुमान जी को प्रे करके वो देते हैं उसमें भी आता है, और प्योर लाइटी के देवस्थान में भी है। तो ऐसा हमने देखा है कि जहाँ पर काफी सारे हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स थे, जहाँ पर उनको कुछ ना कुछ ऐसी पीड़ा, दर्द, ऐसा डिजीज कुछ होता था, हम लोग उसको देते थे तो उसमें काफी सारा राहत मिल जाता था। जैसे हमने एक ऐसा एक पेशेंट को, जैसे हार्ट प्रॉब्लम था, वो चल नहीं पा रहे थे, उनको दिया। तो हाल ही में जब मैं ऑफिस जा रहा था तो वो नजर आए, वो वॉक कर रहे थे, तो उनको मैंने पूछा आप कैसे हो करके, तो वो आंटी बोलती है बेटा आप जैसे पूछते हो उनको और मतलब इनकरेजमेंट मिलता है कि और एक्सरसाइज करके ये करने के लिए करके, तो उनकी उनकी हालत काफी हद तक सुधार हो गई। तो ऐसा मेरा मानना है कि सच्ची श्रद्धा और प्रार्थना से, जैसे वो बोलते हैं दवा का असर और दुआ का असर, ऐसा दोनों होता है। तो जब पूर्ण सेवा भाव से हम लोग प्रार्थना करते तो अच्छा ही होता है, ऐसा मेरा मानना है।
0: सच है और होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कई जगहें इतनी जागृत होती हैं कि आप पूरी आपकी बॉडी, आपका सोल तक उसको महसूस करता है वहां जाके, और वहां इतनी दैव्य शक्तियां यू नो जीवंत होती हैं। तो मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकती हूँ ये सब जो आपने हमारे साथ शेयर किए, ये सारे वाक्या। और मैं चाहती
1: हूँ, और मॉडर्न लाइफस्टाइल में, तनुजा जी, मॉडर्न लाइफस्टाइल में ऐसे काफी सारे हमें मतलब इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये करेंगे तो ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसे सब जब चीजें हम हमारे जहन में रहती हैं कि एक सुपर पावर देख रहा है, वो अगर गलत उसमें 1% भी गलत हो तो उस तरफ जाने नहीं देती ये सुपर पावर। जो सही राह है उसी पे चलना है, ऐसा होता है।
0: करेक्ट करेक्ट। फिर आपको वो डिवाइन गाइडेंस इतना क्लोज

0: को पलट के देखें, अपनी यात्रा को देखें, तो इस जीवन को जिस तरह से आपने अपना जीवन जिया है उसको एक वाक्य में अगर बतलाना चाहें या कोई आपके बारे में बोलना चाहे तो आप क्या चाहेंगे कि वो क्या बोले आपके बारे में?
1: तनुजा जी, मेरा हमेशा ये मानना था कि लोग क्या कहेंगे से ज्यादा मायने रखता है कि मालिक के आदेश क्या है और क्या आदेश करते हैं, और देते भी वही हैं और लेते भी वही हैं। आशा यही होगी कि उनके एक्सपेक्टेशन में हम लोग अव्वल नंबर आए और जो भी सेवा कर पाया हूँ वो स्वीकार हो। लेकिन अगर किसी को ऐसा 50 साल के बाद सोचना पड़े तो जैसा बहुत जन आज भी बोलते हैं कि पापा की तरह भी ये काम करना चालू कर दिया है, तो उनके साये में जो मैं काम कर पा रहा हूँ वो भगवान और उनको समर्पित हो, और जो भी उनका आदेश है और जो भी उनका एक्सपेक्टेशंस ये जीवन में है तो वो मैं सब हासिल कर पाऊं और उनको संतुष्ट रखूं, सब जन सुखी रहें, ऐसा मेरा मानना है। बाकी उसके बाद बारे में और नहीं सोचा हूं कि लोग क्या कहेंगे या टाइटल क्या है या क्या सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि जो भगवान सर्टिफिकेट देते हैं उससे बड़ा और कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो ऐसा मेरा सोचना है अभी एज ऑफ नाउ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह सकती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि आपको लोग सच में आपके फादर का रिफ्लेक्शन मानेंगे, क्योंकि आप सच में उनकी लेगेसी इन द ट्रू सेंस आगे लेके जा रहे हैं, नॉट जस्ट हिज मटेरियलिस्टिक लेगेसी बट हिज स्पिरिचुअल लेगेसी विच इज सो रिच एंड सो डिवाइन।
1: जी तनुजा जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि रेडियो SN और आप सबने ये थीम सिलेक्ट किया है, हमें रेडियो SN के बारे में जो हमारा एक क्लोज्ड कराओके ग्रुप है जो रेखा नाड़कर्णी कामत जी और सुभाष जी कामत उन्होंने शुरू किया है, और यतिन जी उसमें भी यू नो वन ऑफ द मेंबर्स है और कोर कमेटी में भी हैं, तो उन्होंने जब ये बोला कि ऐसा हमें करना है और आप संपर्क करेंगी और ये ऐसा एक रेडियो सेशन हुआ, मैं कभी रेडियो पे नहीं गया हूँ तो ये मेरी पहली बार है, तो कुछ भूल चुक हो तो माफ हो, और बहुत बहुत मजा आया ये सब बात करने में, क्योंकि ये सब आजकल के तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे सोचें, कैसे आगे बढ़े, एक दूसरे का सहायता कैसे करें, और ये जीवन जो आपने बोला जैसे सफर है, तो जब साथ में सफर करते तो उस सफर का मजा एक दूसरे के साथ और ज्यादा कैसे ले, ये सोच मायने रखता है, बाकी सब एक निमित्त मात्र है और आता है और जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यतीन नटकर्णी सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी इस माध्यम से कि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया और हमारा ये रेडियो इंटरव्यू हुआ और हमने इतनी खूबसूरत बातों के बारे में, इतनी डिवाइन बातों के बारे में जाना, उलाल के बारे में जाना, आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना, बहुत ही खूबसूरत सफर रहा ये सच में। थैंक यू यतीन सर, थैंक यू अंशुल सर। जाते जाते मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कराओके ग्रुप की बात की, सिंगिंग की बात की, आपके म्यूजिक में इंटरेस्ट की बात की, तो अगर आप कोई गीत गुनगुनाना चाहें हमारे लिए।
1: मेरा आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम इनटू मोर ऑफ तबला एंड पखावज, तो आई हैव नॉट बीन टू मच इनटू वोकल्स, लेकिन दो लाइन अगर बोलना चाहूंगा तो हम

0: कि जैसे पहले खुद को जय करे।
1: आशा करता हूँ आपको पसंद आया। थैंक यू।
2: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन।
3: अंशुल जी, आज की बातचीत ने हमें ये एहसास दिलाया कि सफलता सिर्फ करियर की ऊंचाइयों से नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, सेवा भाव और आध्यात्मिक गहराई से मापी जाती है। आपके विचारों में एक सुंदर संतुलन नजर आता है, जहां परंपरा और आधुनिकता, कर्तव्य और करुणा

सफलता और विनम्रता सभी एक साथ चलती हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवन यात्रा और अपने अनमोल विचार हम सभी के साथ आज साझा किए। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पे। मिलेंगे फिर एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।

हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, एक और बात बताता हूं इधर उधर की, लेकिन बहुत ही जोश भर देने वाली। जापान ने पहली बार सन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। स्वीडन में आयोजित ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए जापान ने अपने दो एथलीट याहिको मिशिमा और इशिजो कानाकुरी को भेजा था, लेकिन उनके लिए जापान से स्वीडन तक का सफर आसान नहीं था। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों को अपनी यात्रा पूरी करने में करीब 18 दिन लगे। वो सबसे पहले पानी के जहाज से रूस पहुंचे, इसके बाद एक हफ्ते से ज्यादा का रेल यात्रा सफर उन्होंने किया, लिहाजा दोनों ही खिलाड़ियों को तैयारी करने का तो मौका ही नहीं मिला। प्रतियोगिता के दिन शिजो कानाकुरी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थे। उन्होंने खूब जोर लगाकर मैराथन की शुरुआत की, लेकिन आधे रास्ते में ही बेहोश हो गए। मैराथन देख रहे कुछ स्थानीय लोग उन्हें अपने घर ले गए, जहां अगली सुबह उन्हें होश आया। शिजो अपने प्रदर्शन से बहुत दुखी थे। दुख से डूबे हुए वो बगैर स्टॉकहोम के ओलंपिक अधिकारियों को बताए जापान वापस लौट गए, इसलिए एसोसिएशन ने उनके नाम के आगे मिसिंग यानी कि गुमशुदा लिख दिया। स्वीडन नेशनल ओलंपिक खेलों की किताबों में वो कई सालों तक गुमशुदा रहे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने साल 1920 और 1924 में जो ओलंपिक्स गेम आयोजित किए गए थे उसमें हिस्सा लिया था। साल 1967 में स्वीडिश नेशनल ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने शिजो कानाकुरी से स्टॉकहोम वापस आकर अपनी अधूरी मैराथन पूरी करने का आग्रह किया। है ना आश्चर्यजनक बात दोस्तों? कौन याद रखता है इतने सालों तक कि उन्होंने अपनी मैराथन पूरी नहीं की थी, वो मिसिंग थे। 75 साल के उम्र में वो वापस आए और अपनी अधूरी रेस पूरी की। मैराथन पूरी करने का समय था 54 साल 8 महीने 6 दिन 5 घंटे 32 मिनट और 20.3 सेकेंड्स। ये इतिहास की सबसे लंबी मैराथन दौड़ थी दोस्तों। है ना आश्चर्यजनक बात? लेकिन मैराथन दौड़ को पूरा करने का जोश लगातार कायम रहा, खिलाड़ी के अंदर भी और जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित किया था उन अधिकारियों में भी। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: ओ मेरी

औषध मिली। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज़।

आइए दोस्तों, आपको आज बताते हैं मोहताज अजय झा जी के बारे में। जब चारों तरफ अपनों की लाशें बिखरी हों, अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ खानदान का कोई बुजुर्ग मलबे के नीचे से बचा लेने के लिए पुकार रहा हो और संज्ञा शून्य नन्नी भांजी या भतीजी एक सवाल अपनी हिचकी में दबाए आपके हाथों में दम तोड़ देती हो कि मैंने तो दुनिया अभी देखी ही नहीं थी, तो आपकी मनस्थिति कैसी होगी दोस्तों? इससे ज्यादा त्रासद मंजर कोई दूसरा नहीं हो सकता। मगर युद्धग्रस्त इलाकों के बाशिंदों की नियति ऐसे दृश्यों से उनकी मुठभेड़ कराती ही रहती है। गजब यह है कि इस कोहराम के बीच भी लोगों को जीना पड़ता है। ऐसे हालात में एक पत्रकार किस साहस से अपने फर्ज को अंजाम देता है, फिलिस्तीनी पत्रकार मोहताज अजय झा इसकी मिसाल हैं। शांत इलाकों के नौजवान जिस उम्र में रोमानी दुनिया के हसीन ख्वाब बुना करते हैं, मोहताज ने अपनी जान जोखिम में डालकर फिलिस्तीन की जमींदोज हुई बस्तियों और बमबारी के शिकार बने बेगुनाहों की तस्वीरों से एक तारीखी दस्तावेज तैयार किया है। इस काम के लिए उन्हें दुनिया भर से सराहना मिल रही है और अब प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका ने 2024 की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में उनको शुमार किया है। गाजा पट्टी के दीर अल बलाह शरणार्थी शिविर में नवंबर 1999 में मोहताज पैदा हुए। जब होश संभाला तो अपने चारों तरफ तनाव ही पसरा पाया। सुकून और बेफिक्री से शायद फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों का कम ही साबका पड़ता है। मोहताज जब 6 साल के थे, अपनी बस्ती की सड़कों पर उन्होंने इजरायली टैंकों को दौड़ते देखा। जब वो 8 साल के हुए तो गाजा पट्टी पर अपना दबदबा कायम करने के लिए फिलिस्तीन के हमास और फतेह गुटों के लड़ाकों को एक दूसरे का खून बहाते देखा और उसके बाद तो हर दूसरे साल इजरायल हमास बकायदी से लड़ते भिड़ते ही रहे। इन भिड़ंतों ने ही वहां के बच्चों के भीतर खौफ को खत्म कर दिया। इंसान होने की सिफत बस इतनी ही बची रही कि तनाव और हिंसा के बीच भी इन इलाकों के शिक्षकों ने अपना धर्म निभाना नहीं छोड़ा और ना ही डॉक्टरों ने इलाज करने की अपनी सेवा को छोड़ा। इसके कारण मोहताज जैसे बच्चों का मुस्तकबिल संवरता रहा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा में दाखिला लिया। यहां पढ़ते हुए मोहताज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी से जुड़ गए, ताकि रेड क्रॉस के जरिए वो बेबस लोगों की कुछ मदद कर सकें। साल 2018 की बात है। गाजा इजराइल सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते देखते लड़ाई में बदल दिया गया। मोहताज तब 19 साल के रहे होंगे। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के बैनर तले राहत कार्य करते समय एक इजरायली स्नाइपर ने उनकी जांग को गोलियों से जख्मी कर दिया। मोहताज का जख्म कुछ हफ्तों में भर गया, लेकिन हिंसा जारी रही। इस दारुण अनुभव को उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आईं और इस तरह उनके अंदर एक पत्रकार पैदा हुआ। साल 2021 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद मोहताज एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी से जुड़ गए। बहुत ही जल्द उनका नया ठिकाना एक अमेरिकी संगठन बना, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की खातिर संयुक्त राष्ट्र राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करता था। मोहताज बहुत खुश थे। उन्हें इस संगठन में फोटो और वीडियो प्रोड्यूसर की नौकरी मिली। वो अपने गाजा के लिए कुछ करना चाहते थे। आखिरकार वो उनका घर है। वहां की जिंदगी के विविध रूपों और दुश्वारियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। मगर दुर्योग से वो वहशी सुबह जल्द ही आ गई, जिसके प्रतिशोध ने गाजा को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसराइल पर अपने बर्बर हमले से हमास ने असंख्य दुखों को न्योता दे दिया। हमास ने जब इसराइल पर रॉकेट दागे, तब मोहताज को यह लग रहा था कि इस बार जंग बहुत महंगी साबित होने वाली है। कुछ घंटों बाद ही इजरायली हमले शुरू हो गए, भयानक वेग और बर्बरता को समेटे हुए।
मोटाज के कैमरे ने उनको फिल्माना शुरू किया। आम फिलिस्तीनी की पीड़ा, बेबसी और युद्ध की विडंबना उनकी तस्वीरों और वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। मगर 12 अक्टूबर को उन्होंने जो वीडियो और तस्वीरें डाली वो लाखों लोगों को मर्माहत कर गई। इसराइल के हवाई हमले में उनके परिवार के 15 सदस्य मारे गए। अगले 107 दिनों तक वो इसी तरह हकीकत तफसील के साथ दुनिया के सामने लाते रहे। मगर इसराइली हमले की आलोचना करते हुए भी मोटाज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके किसी संदेश से नफरत की बूंद आए। मगर इसराइली फौज को यह सब नागवार गुजर रहा था। मोटाज को अलग अलग नंबरों से धमकियां मिलने लगी। घर पर बमबारी का खतरा बढ़ने लगा। अक्टूबर से गाजा में 120 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। ऐसे हालात में मोटाज के लिए एक एक दिन जब भारी पड़ने लगा तो उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों छोटे भाइयों और माता पिता के साथ उन्होंने गाजा से निकल जाने की इजाजत मांगी। मगर 23 जनवरी को गाजा छोड़ते हुए वो काफी गमगीन और कुछ शर्मिंदा भी थे, क्योंकि उन्हें जो सहूलियत मिली वो उनके देश के तमाम लोगों को हासिल नहीं है। मोटाज अब दोहा में रह रहे हैं। उन्हें जब भी मनोचिकित्सकों से मिलने की सलाह दी जाती है वो यही कहते हैं, अभी युद्ध विराम हुआ कहां है। वो इस युद्ध के खिलाफ दोहा से भी सक्रिय हैं। मोटाज की बहादुरी ने इंस्टाग्राम पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आप

आइए दोस्तों बताता हूं, ये कुछ काम भी देशभक्ति की ही मिसाल हैं। आज सुबह जैसे ही उसने उठकर बाहर झांका, उसे कुछ समझ नहीं आया। गली में कितना कचरा जमा था, कितनी बदबू आ रही थी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उधर कब से नल बहा जा रहा है। अपना घड़ा भर जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए ना, बाकी लोगों को भी तो प्यास लगती है। कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन नल खुला छोड़कर बस चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझते कि इन छोटी छोटी बातों से कितना नुकसान होता है। कुछ लोग सड़क पर टेंट लगा देते हैं।

और गड्ढा भी खोद देते हैं। अरे भाई, इस सड़क निर्माण में करोड़ों रुपया का खर्च आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। घर से बाहर निकल आया, बगीचे में गया, हरे भरे पेड़ों से बातें करने लगा। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, बच्चे झूल रहे थे, लोग टहल रहे थे और कुछ व्यायाम भी कर रहे थे। इस खूबसूरत माहौल को देखकर वो सोचने लगा, इस बगिया की तरह ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, पर कुछ लोगों की नादानी की वजह से थोड़ा बिगड़ जाती है। तभी उसने देखा कि एक जगह कचरा बिखरा पड़ा था। कुछ लोग नमकीन के खाली पैकेट बिखेर कर चले गए। उसने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। वो बगीचे से बाहर आ गया। सामने रेलवे स्टेशन था। यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पर ये क्या, इधर धक्का मुक्की कैसी? देखा तो लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। उसने सुरक्षा कर्मी से बात की। उसके आने पर सब व्यवस्थित हो गया। काफी देर हो गई, वो सड़क से चलते हुए घर आ रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे काफी चोट आई। कोई उसकी मदद करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। वो एक टैक्सी वाले की मदद से उसको अस्पताल ले गया। एक अखबार वाले ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? लोग तो समस्याओं से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उनसे जूझने में लग जाते हो, आपको क्या मिलता है? वो बोला, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसलिए हमें इसे जूझने में संकोच कैसा? देखने में ये छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इनका संबंध सीधा देश से है। सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करना भी देशभक्ति नहीं है। नेता बन गए तो क्या, जब देश के लिए कुछ किया ही नहीं? एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने आसपास को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, चाहे वो पानी हो या पैसा, अन्न हो या बिजली। ऐसा करके हम जाने अनजाने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसा करके हम बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय देते हैं। दोस्तों, बात में तो दम है।

आइए दोस्तों, एक और काम की बात बताता हूं। एक मंत्र है, एक जुगाड़ है, एक योजना है, एक युक्ति है। अपना लीजिए, बहुत मजा आएगा। हम सभी अपनी जिंदगी में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पाना चाहते हैं ना, हर वक्त हर चीज में। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देते चलिए। जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा शुक्रिया कहेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें हमारी तरफ अपने आप आएंगी। अब देखिए कितना आसान तरीका है ना ये। तो जिंदगी में ज्यादा पाने का आसान तरीका है धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना। आदत डालिए दोस्तों, जिससे भी मिलिए, जहां पर भी मौका मिले, शुक्रिया अदा करना आपकी आदत बन जाना चाहिए। शुक्रिया करते चलिए, जिंदगी में ज्यादा ज्यादा ज्यादा पाते चलिए।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993, यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

चंडाल चौकरी चांद चुराने आए, चमचा चलम चकोर चरैया चूचू चू चर रहा है, भैया चूचू का मुरब्बा, भैया चूचू का मुरब्बा। टकला टकलू टाक टवोरी टकिया टपकी जाए।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: आज फिर दिल ने कहा, आओ भुला दे यादें। आज फिर दिल ने कहा, आओ भुला दे यादें। जिंदगी बीत गई और वही यादें ही यादें। जिस तरह आज ही बिछड़े हों, जिस तरह आज ही बिछड़े हों बिछड़ने वाले, जैसे एक उम्र के दुख याद दिला दे यादें। काश मुमकिन हो एक कागजी कश्ती की तरह, काश मुमकिन हो एक कागजी कश्ती की तरह, खुद फरामोशी के दरिया में बहा दे यादें। भूल जाना भी तो एक तरह की नेमत है फराज, भूल जाना भी तो एक तरह की नेमत है फराज, वरना इंसान को पागल ना बना दे यादें। नमस्कार, आदाब। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के इस बेहद खास और आपके पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, पिछले हफ्तों में जब हमने अपनी रेडियो SN फैमिली के अज़ीज़ दोस्तों की फरमाइशों का सिलसिला शुरू किया था तो आप सबको बहुत पसंद आया और आप में से बहुत दोस्तों का भी दिल किया होगा कि आप ही हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो आपकी इसी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ एक और फरमाइशी प्रोग्राम। आखिर जज्बातों और सुरों की इस आमेजिश यानी मिलाप को कैसे रोका जा सकता है। तो आज की इस मखमली शाम में टेलीफोन के ज़रिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी फैमिली के 5 बेहद अनमोल रतन। आज हम पहले से नाम नहीं बताएंगे दोस्तों, बल्कि सुरों का ये सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इन नगीनों से आपकी मुलाकात होती जाएगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए सीधे रुख करते हैं फ़ोन की तरफ और सुनते हैं कि आज हमारे पहले दोस्त हमसे कहाँ से जुड़े हैं और उनकी पसंद क्या है। सुनते हैं ये पहली कॉल और फिर गजल।
2: हेलो
3: हेलो हेलो राघवेंद्र, मैं SN रेडियो से आरती रॉय बात कर रही हूँ हमारे गजलों के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक के लिए से।
2: वाह आरती जी, व्हाट अ सरप्राइज।
3: कैसा लग रहा है आपको, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ, वीक का शुरुआत है, बहुत अच्छा चल रहा है।
3: ओके राघवेंद्र, हम गजलों का फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैं अपने प्यारे दोस्तों से उनसे फ़ोन पे उनकी पसंद के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही थी तो मैंने आपका नाम चुना। तो आप हमें ये बताइए राघवेंद्र के आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: मेरा फेवरेट गजल सिंगर टॉप ऑफ द माइंड जगजीत सिंह साहब हैं।
3: ओके, वेरी नाइस।
2: मैं कारण भी बता देता

0: रोहित साहब उनकी बैटिंग ठहराव होती थी, नजाकत होती थी, वही बात मुझे जगजीत साहब की गायकी में नजर आती है, या दैट्स द वे आई सी इट, इट्स ऑलवेज सो नाइस।
1: वाओ वाओ, हमें जगजीत साहब की इस तरह की सिमिलैरिटी किसी ने नहीं आज तक बयां की होगी। दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। एनीवेज, आपने बता दिया आपको ये किस लिए आपको जगजीत जी पसंद है। आप हमें ये बताइए हमारे दोस्तों को कि आपको उनकी गजल कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है।
0: गजल वो है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या है। नीता फजली साहब ने लिखा है इस गाने को और जगजीत साहब ने बखूबी गाया है इसे। तो मुझे एक शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं, हम दोस्त कह ना पाए उनसे हाल दिल कभी और वो समझे नहीं, थोड़ा रोक करके बोलते हैं खामोशी क्या चीज है, वो इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग।
1: आप एक लाइन हमें गा के सुनाइए ना।
0: हम

0: खामोशी क्या चीज है।
1: बहुत खूब, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं राघवेंद्र, वेरी नाइस। तो चलिए दोस्तों, फिर राघवेंद्र की पसंद तो हमें पता चल गई, तो उनके साथ हम भी सुनते हैं होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। राघवेंद्र जी की पसंद हम और आप सब मिलकर सुनते हैं।

0: वाकई होश वालों को क्या खबर कि जिंदगी क्या चीज है। जगजीत सिंह साहब की आवाज का जादू जब भी कानों में घुलता है रूह को सुकून दे जाता है। दोस्तों, ये थे बेंगलोर से हमारे दोस्त रागेश्वर देशमुख साहब, माफ कीजिएगा, राघवेंद्र साहब। सच कहूँ तो राघवेंद्र जी ने जो जगजीत सिंह साहब की गायकी की तुलना क्रिकेट के दी वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की बैटिंग से की है, वो अपने आप में एक नायाब तशबी यानी तुलना है और बेमिसाल नज़ीर यानी उदाहरण है। जैसे पिच पर राहुल द्रविड़ का वो गजब का ठहराव और हर स्ट्रोक की एक मुकम्मल लय होती थी, ठीक वैसी ही कंसिस्टेंसी और ठहराव जगजीत सिंह साहब की गायकी में भी है। जगजीत जी भी अगर आज होते और ये बात सुनते तो मुस्कुरा ही पड़ते। यकीनन राघवेंद्र जी, आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए आगे सुनते हैं ये अगली आवाज भला किसकी है।
1: हेलो
2: हेलो हेलो
1: हेलो सना, दिस इज आरती रॉय फ्रॉम SN रेडियोज अल्फाज से एहसास तक प्रोग्राम से।
2: माय गॉड, वाओ, इट्स अ ग्रेट सरप्राइज। आरती जी, मैं आपके बहुत प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा,
1: इसीलिए मैंने आपको फोन किया है, क्योंकि आप गजलों की बहुत शौकीन लगती हैं और आप बहुत रेगुलर होती हैं, तो हम फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं सना, तो मुझे आपका ख्याल आया कि आपसे फोन करके पूछा जाए कि सना, आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: ओके जी, आरती जी, गजल दिलों को छू लेने वाला एक ऐसा संगीत प्रकार है कि जिसकी गहराई में लोग अक्सर डूब जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां से निकलना नामुमकिन है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सना, ये बताइए कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: जी मुझे तलत अजीज जी के गजलें बहुत पसंद है।
1: तलत अजीज, ओके, वेरी नाइस, मुझे भी बहुत पसंद है तलत अजीज। अच्छा सना, ये बताओ तलत अजीज की आपको कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है?
2: अपने ये जो है डैडी फिल्म की एक बहुत खूबसूरत सी गजल है, आई ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे।
1: ओके, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और आपको ये गजल क्यों पसंद है इतनी सना?
2: क्योंकि आरती जी ना, इस गीत में इंसान के अकेलेपन के बदलते समय और रिश्तों के बाजार में बिकने का दर्द, ये जो है इसको बहुत गहराई से बयां किया गया है। इसकी खास बात अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो ये एक्चुअल में सिंगिंग करने के लिए बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, पर उसका प्रत्येक अंतरा अलग अलग अंदाज में गाया हुआ है, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और ये बहुत ही प्यारी, प्रसिद्ध और बहुत भावुक, ऐसी रूह को छू लेने वाली गजल है, मुझे वो बहुत पसंद है।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत नफीस आपकी पसंद है सना, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी पसंद जान के। तो चलिए फिर हम सब सुनते हैं मिलके आपकी पसंद की डैडी फिल्म की ये गजल, अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं और आपको भी सुनाते हैं। ओके
2: जी, जरूर जरूर, थैंक यू।

0: वाह, अभी आपने सुनी तलत अजीज की ये बेहद सुंदर पेशकश। दोस्तों, ये थी हमारी SN फैमिली से सना शेख, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं और अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ली है। फोन पर उनसे बातचीत करते हुए मुझे अंदाजा हो गया कि मराठी मौसीकी यानी संगीत और अदब पर उनकी कितनी पुख्ता पकड़ और गहरी समझ है। दोस्तों, आपने सुना सना जी ने कितनी बारीकी से नोट किया कि इस गजल के हर अंतरे को एक अलग ही अंदाज से गाया गया है, जो कि गाते वक्त काफी मुश्किल होता है। वैसे दोस्तों, सना जी के शौहर आसिफ शेख साहब भी बहुत अच्छे गायक हैं। बहुत जल्दी हम उनसे भी बात करने वाले हैं। सना जी, आपका इस महफिल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारी अगली मंजिल की तरफ और सुनते हैं कि कौन जुड़ा है हमसे फोन लाइन के उस पार। ट्रन ट्रन।
1: हेलो हेलो
0: यस,
1: मीना,
0: गुड आफ्टरनून।
1: हेलो मीना, दिस इज आरती रॉय फ्रॉम रेडियो SN
0: हाय
1: अल्फाज से।
0: आरती।
1: हाय, तो मैं गजलों के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास से बात कर रही हूँ मीना।
0: जी
1: तो सिंस आप मेरे प्रोग्राम को सुनती हैं और
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: मालूम है कि आपको गजलें बहुत अच्छी लगती हैं,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: मैं गजलों का एक फरमाइशी प्रोग्राम बना रही हूँ। तो मैंने सोचा उन लोगों से फोन पे बात की जाए और उनकी पसंद जानी जाए और उनकी पसंद की गजलें प्ले की जाए, तो
0: ओके
1: इसलिए मुझे आपका ख्याल आया और मैंने आपको फोन किया। तो आप हमें ये
0: बढ़िया।
1: बताइए मीना कि
0: हाँ
1: आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
0: फेवरेट गजल सिंगर मेरे जगजीत सिंह हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। मैं HMV में काम करती थी एक जमाने में, तो लगभग उनकी हर रिकॉर्डिंग और उनके हर रिकॉर्डिंग की प्रमोशन मैंने ही की है,
1: अरे वाह
0: जितने भी
1: मीना,
0: HMV में रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उनकी।
1: ओ
0: लेकिन
1: वाह,
0: पहले पहले मैं जब गजल से मुखातिब हुई वो 1974 में था, जब मेहदी हसन साहब इंडिया विजिट कर रहे थे
1: अच्छा,
0: और उनका मतलब बम्बई में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है षण्मुखानंदा, वहाँ पे उनका गजलों का प्रोग्राम था। तो मैंने घर में कहा कि एक्स्ट्रा क्लास है मेरे और मैं गजलें सुनने चली गई। मैंने कहा ये तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ, और तब जो मेरी मतलब क्या मोहब्बत हो गई गजलों से कहना चाहिए, क्योंकि मुझे शायरी अच्छी लगती है। एनी काइंड ऑफ पोइट्री आई जस्ट लव। उसमें थोड़ा वो क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति वाली बात होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है
1: ओके।
0: और
1: अच्छा,
0: तब
1: आप
0: से
1: ये
0: मैं सुनती आ
1: बताइए।
0: रही हूँ। हाँ
1: हाँ ठीक है मीना, आप
0: हाँ
1: हमें ये बताइए कि आपके जगजीत सिंह जी, तो अब समझ में आ गया कि आप तो बहुत लकी हैं जो आप उनसे, उनको इतनी बार मिली होंगी और
0: जी
1: उनको रूबरू देखा होगा। और मुझे ये बताइए कि जगजीत सिंह साहब की कौन सी गजल आपको पसंद है और क्यों?
0: एक इबादत वाली गजल उन्होंने गाई है, दोनों ने मिलके, जगजीत चित्रा ने, मंजिल न
1: अच्छा,
0: दे चराग न दे हौसला तो दे। मुझे
1: वाह,
0: ये बेहद पसंद है
1: ओके
0: क्योंकि मैं खुद बड़ी प्रेयरफुल
1: ओके ओके
0: हूँ
1: ओके,
0: और
1: वाह
0: मैं मोहब्बत का वास्ता भी उस खुदा को ही देती हूँ।
1: क्या बात है,
0: हाँ जी, तो इसलिए मुझे वो गजल मेरी फेवरेट है।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपके एहसासात की हम कदर करते हैं
0: जी
1: और तो सुनते हैं दोस्तों मीना अय्यर की पसंद पर उनकी बेहद खूबसूरत पसंद, और आप भी सुनिए हमारे साथ। तो ओके मीना,
0: यस, थैंक यू।
1: थैंक यू।

0: क्या क्या गाती हो यार तुम, कैसे तुमने कैसे कैसे कर लेती हो तुम इतना अच्छा। उफ,
1: मैं तो इतनी अच्छा गाती नहीं हूँ, आरटीडी हो जाता है,
0: बहुत सुंदर, बिल्कुल वैसे ही आपने वही मुर्कियाँ ली और उसी लहर से गाया, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। तो चलिए फिर आपकी पसंद पे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ओके
1: ओके।

0: क्या बात है दोस्तों, उस्ताद गुलाम अली साहब की वो मखमली मुर्कियाँ और हरकतें और हमारी इंदु ने फोन पर हूबहू उसी पाकीजगी से इसे गाकर सुनाया। वाह दोस्तों, ये थी तीनसुखिया से हमारी आरके इंद्रानी और एसएन फैमिली की बेहद खास मेंबर, जिन्हें हम प्यार से इंदु बुलाते हैं। इंदु के गले में वाकई साक्षात सरस्वती का वास है। इतनी लाजवाब गायकी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंदु डियर। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज की महफिल की आखिरी कॉल की तरफ और देखते हैं कि शुरू के इस कारवां का आखिरी पड़ाव कौन सा है। तो सुनते हैं ये आखिरी कॉल। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हेलो
2: हेलो रूपा।
1: हेलो आरती जी।
2: हाय, हाउ आर यू डार्लिंग?
1: आई एम फाइन थैंक यू। आरती जी आरती जी।
2: That is so sweet, Rupa. We are going to make one for my hip program.
1: Okay.
2: Alpha se ehsaas tak ke liye. So since you are very regular in my program and I know that you like ghazals also, so main chahti ke main Rupa ki pasand ki ghazal apne program mein play karun, apne doston ko sunaun, hum sab sune. To Rupa, aap ye bataiye ki aapka favorite ghazal singer kaun hai?
1: मेरा फेवरेट गजल सिंगर यानी गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब।
2: गुलाम अली साहब मेरे भी बहुत फेवरेट गजल सिंगर हैं। आप ये बताएंगे कि इन साहब की आपको गजल कौन सी पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा यानी

0: अरे
1: ये गजल क्यों पसंद है आपको?
0: हाँ
1: ये गजल इतनी क्यों पसंद है आपको?
0: इतनी क्यों पसंद है? वैसा देखा जाएगा तो हम सब थोड़ा बहुत पागल होते हैं ना, हम सभी में कुछ ना कुछ पागलपन होता है ना, हम सब पागल ही हैं थोड़ा बहुत।
1: थोड़ा थोड़ा पागल हम सबका होता है, राइट?
0: हाँ, सब में एक दीवानापन होता है, सबका दिल दिल में थोड़ा पागलपन होता है ना, तो इसलिए पसंद आ गया होगा, और दूसरा कोई वजह है नहीं।
1: ओके, वेरी नाइस वजह, एक्चुअली आई लाइक
0: हाँ
1: इट। बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रूपा। तो आपके साथ चलिए फिर हम अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं ये गजल, के उनका भी दिल पागल है या नहीं।
0: जरूर
1: ओके
0: होगा।
1: ओके ओके ओके

वाकई सुरों की ये आवारगी जब दिलों को छूती है तो इंसान अचानक थम सा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये थी चेन्नई से हमारी बेहद वर्सेटाइल और खूबसूरत रूमानी दोस्त, हमारी SN फैमिली की रूपा जी, जो SN रेडियोज में तमिल के प्रोग्राम भी कंडक्ट कर चुकी हैं और हमारी इस महफिल की मुस्तकिल यानी रेगुलर सामिया यानी सुनने वाली हैं। रूपा जी, आप ही की तरह आपकी खूबसूरत फरमाइश का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, बेंगलोर से शुरू हुआ ये सफ़र, मुंबई से होता हुआ आसाम और फिर चेन्नई पर आकर रुका। हमारी रेडियो SN फैमिली के इन पांचों दोस्तों, रागेश्वर जी, राघवेंद्र जी, सना जी, मीना जी, इंदु और रूपा जी ने आज सुरों और जज्बातों का जो गुलदस्ता सजाया, उम्मीद है उसकी खुशबू आपके जहन में देर तक महकेगी। अब घड़ी की सुइयां हर रोज की तरह टिक टिक टिक कर रही हैं और कह रही है कि अब थम जाओ, तो कल फिर इसी वक्त कुछ नए अदबी अल्फाज और कुछ अनछुए एहसासों के साथ एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN एंड रेडियो टांटिया भील। अपनी रेडियो दोस्त आरती को अब दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे गाय के गोबर में कितनी गुणवत्ता है, कितने प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कितना लाभ ले सकते हैं हम कृषि में। तो इससे जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, पालेकर जी ने भी करवाए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया, उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है, ओनली देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने देसी गाय के गोबर गोमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गोमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए।
2: अच्छा।
1: जो अन्य किसी में इतने नहीं। तो हम क्या करते हैं जीवामृत बनाने के लिए, देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। इस गोबर गोमूत्र को इस ड्रम में डाल दें पानी वाले में, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, और इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5 दिन घोलना है। छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार।
2: अच्छा।
1: अब मिश्रा जी, दुनिया में 1 एकड़ का 6 दिन में खाद तैयार हो जाए कोई पद्धति नहीं। और हाँ, और इसमें साइंस क्या है वो सब किसान बंधुओं के लिए समझने की बात यह है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे, असंख्य होंगे।
2: बिल्कुल।
1: और मूत्र जो हो खनिजों का भंडार है, जो जमीन को तत्व चाहिए उनसे भरा पड़ा है। अब इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया हमने, वो प्रोटीन है
2: जी।
1: जब वो जीवाणु इस प्रोटीन को खाएंगे तो पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, और गुड़ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो उनमें मिलके वो असंख्य संख्या में बढ़ेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, इतनी मात्रा में बढ़ते। अब इस घोल को हम 6 दिन से 12 दिन के बीच में स्प्रिंकल के द्वारा और ड्रिप के द्वारा या खुले पानी में, पानी के साथ इसको छोड़ दें, एक ड्रम को एक एकड़ में
2: जी,
1: तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये खेत में जाएगा तो ये वहां जामुन का काम करेगा। जैसे एक क्विंटल दूध में एक चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही ये जीवाणु जामुन का काम पूरे खेत में जाके करेंगे और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके अनेक तरह के बैक्टीरिया वहां पैदा होंगे, अनेक प्रकार के। और ये बैक्टीरिया ही वो हैं जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है उसको ये खींचेंगे और ये पौधे की जड़ को देंगे। इसके अतिरिक्त हमें नाइट्रोजन यूरिया डीएपी बाजार की जरूरत ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, हमारी धरती में फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, ये तत्व पहले से ही विद्यमान होते हैं
2: जी।
1: लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए अपने आप पौधे के भोजन का निर्माण नहीं करते।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, हमारे घर में किचन रसोई है, सबके घर में रसोई में नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सारी चीज है, लेकिन उससे अपने आप भोजन तो नहीं बनेगा।
2: अपने आप तो नहीं बन सकता जी,
1: सारी चीज है लेकिन भोजन नहीं बनेगा। भोजन कब बनेगा? जब हमारी माता बहन उठेगी, वो आटे को परात में डालेगी, पानी से गूंदेगी, चपाती बनाएगी, दाल उठाएगी, सब्जी काटेगी, छौंका लगाएगी, पकाएगी, तभी वो भोजन तैयार होगा खाने के लिए। बिल्कुल जो काम रसोई में हमारी माता बहन करती है, वही काम किसान के खेत में जीवाणु करता है। जो तत्व धरती में है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम आदि जो तत्व हैं, वो गांठ बनाए पड़े हैं, उनसे उनको तोड़ के भोजन बनाने का काम पौधे के लिए जीवाणु करता है
2: जी।
1: तो धरती में जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। लेकिन जो रासायनिक खेती है वो इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो यदि लंबे समय आप रासायनिक खेती करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बंजर जमीन बना के देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा एक समय के बाद, बिल्कुल कुछ नहीं पैदा होगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सबसे बड़ा मित्र है। और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा?
2: नहीं जिएगा।
1: सीधा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
2: जी,
1: वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा,
2: बिल्कुल
1: वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं। तो बताइए धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और इस बात को साइंटिस्ट समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा अपने खेत के, बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं, आप तो गांव में रहते हैं
2: जी।
1: मुझे अपार प्रसन्नता और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है और चलते हुए एक गोबर यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और चली गई, ऐसा होता है ना
2: जी? बिल्कुल।
1: आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना,
2: अच्छा,
1: उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे,
2: अच्छा,
1: उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था, लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया और उसकी गंध पा करके धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते हैं ना, जो मैंने बताया
2: जी।
1: और घन जीवामृत डालते हैं तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है और जब मरता तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है, हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, जिस छेद से जाता उसे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए, कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता है तो वर्मी वो शरीर से छोड़कर छेद को लीपते हुए जाता है, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता
2: जी।
1: और धरती में जो खनिज है उनको खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम करता अर्थपर्ण।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपकी बातें।
1: अब जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि 1 एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है
2: जी।
1: वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता है, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता है, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी। और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ है खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बाढ़ आती कैसे है, जमीन को यूरिया डीएपी ने पत्थर बना दिया, सख्त कर दिया, मित्र जीव बचे नहीं, छेद उसमें है नहीं, बारिश बरसती है, पानी तेजी से बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, धरती में जाने नहीं पाता, वाटर लेवल डे बाय डे डाउन आ रहा है।
2: बिल्कुल,
1: तो ये विनाश का रास्ता यूं चल रहा है। दूसरा मिश्रा जी, जब ये तो हुई वर्षा का इलाज, पानी जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और ये पानी भी कैसा है, स्टीलाइज पवित्र वर्षा जल, धरती में जाएगा तो पीने के लिए भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा, हमारा भूगर्भ भंडार जल का भरेगा। जब अकाल पड़ेगा, जून का महीना होगा, लूएं चलेंगी, बारिश होगी नहीं, ऐसे समय पौधा कैसे बचेगा? तो ये जो छिद्र बनाए है ना, जब धरती तपेगी तो नीचे तो पानी है ना, उसमें वाष्प बनेगी
2: जी।
1: जब वाष्प बनेगी तो वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। और इसका उदाहरण क्या है, जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में करना चाहिए। जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन देता है, पानी कौन देता है, लेकिन समय पर आकर के वो पेड़ फलों से लद जाते हैं। आप जंगल के किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ के लैब में ले जाओ और उसको टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब वहां ये नियम काम करता तो वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति जो काम जंगल में करती वही काम खेत में होना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक कृषि है। तो इसका ये इतना बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा हमें खाद बनाते हैं, ये तो जीवामृत है
2: जी।
1: एक है घन जीवामृत, वो क्या है, जब किसान के पास ज्यादा गोबर हो जाए, जीवामृत की जरूरत खेत में ना रहे, तो वो सूखी देसी गाय की एक क्विंटल गोबर की खाद धरती में थोड़ा उसको पीट के बारीक कर ले, उसमें यही चीजें डालनी जो आपने जीवामृत में डाली, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 5-7 किलो गौमूत्र उसमें मिला के और पशुशाला के कोने पे रख दे, प्लास्टिक से ना ढके, जूट की बोरी से ढक दे। ये घन जीवामृत 6 महीने भी खराब नहीं होता।
2: अच्छा,
1: इसमें जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। जब किसान खेती बीजे तो उससे पहले डीएपी की तरह धरती में इसको डाल दे और उसके बाद बीजे। ये आप ज्यादा कम बढ़ा सकते हैं, कोई खतरा नहीं, 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल दें तो उत्पादन बहुत बढ़ेगा। और जीवामृत जो है, हर पानी जब देता किसान, हर पानी में जीवामृत छोड़ दे और 15-20 दिन में फसल के ऊपर 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर उसका स्प्रे कर दे, तीसरे दिन फसल की रंगत बदलेगी। तो ये 2 तरह के हम खाद बनाते हैं। अब शुरू में जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आएंगे तो धरती की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, धरती बंजर कमजोर हो चुकी है, तो उसमें कीट पतंग आएंगे। उनके निदान के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी प्राकृतिक कृषि, इसमें पूरा विवरण मैंने दिया है। उसमें नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ऐसे कुछ कीटनाशक बनाते हैं प्राकृतिक, गाय मूत्र में नीम, धतूरा, आग, चिरायता, गिलोय ऐसी जड़ी बूटियों को पका के रख लेते हैं और उसको पानी में 2 लीटर डाल के, 15-20 लीटर पानी में 2 लीटर डाल के टंकी से छिड़काव करेंगे तो कीट का भी इलाज हो जाएगा। और उसमें जो फंगस वगैरह आती तो खट्टी छाछ, कई कई महीने पुरानी खट्टी छाछ, उसको भी हम पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे को ताकत भी देगी और रोगों से भी बचाएगी। इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों घर में किसान बना सकता है। और जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो बीमारी आनी खत्म हो जाएगी। मेरे 200 एकड़ खेत में कीटनाशक में छिड़कता ही नहीं, ये जो मैंने बताया इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बीमारी आना ही बंद होगी मेरे खेत में और ये जो छिड़काव है ये भी कम हो गए हैं। इतनी जमीन उर्वरक बन गई है कि उसमें मित्र कीटों ने अपना काम इतना कर दिया है कि अद्भुत काम उसमें शुरू हो गया। तो एक तो पद्धति खाद के रूप में तो ये है जीवामृत, घन जीवामृत, और इसके साथ एक है आच्छादन, मल्चिंग। जब हम फसल बोते हैं तो इस प्राकृतिक खेती में एक तो मल्टी क्रॉप करते हैं, एक ही फसल नहीं बोते, एक साथ हम कई कई फसलें बीज देते हैं। गेहूं बोझ दिया तो बीच में चना बो दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसे हम एक समय पर अनेक तरह की फसल बोते हैं, और वो एक अब आ गई किसान को लाभ हो गया, मूल फसल बचत में, और ये दूसरी फसल खर्चा निकाल देती है उसका, तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और जितना धरती को ढककर के हम रखेंगे उतना ही जमीन की और का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अब ये जो मल्चिंग है वो क्या है, खेत का जो घास फूस है हम उसको आग लगाते हैं, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इसे प्रदूषण भी बढ़ेगा और हमारे जो जीवाणु वो भी मरेंगे, मित्र जीव भी मरेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी अवशेष जमीन में से निकलते हैं उनको काट के जब फसल बो दी, फसल को छोड़ के बाकी खाली जगह है उस पे उसको बिछाओ, उसके कितने जबरदस्त लाभ हैं वो किसान बंधु सुनेंगे। नंबर एक, जब हम धरती को ढक देंगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है और वो आकाश में जाकर के वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, और हम उसे मल्चिंग करके ढकते हैं तो वो उड़ने नहीं पाता, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। एक काम नंबर दो इस मल्चिंग का लाभ है कि 50% पानी आपका बच जाएगा, 50% पानी सारे देश की धरती का निकलना बंद हो जाएगा। क्यों, जब हम इसको ढके रखेंगे तो ये जो मल्चिंग है ये आकाश में जो जलीय तत्व है उसको खींचती है और ये जमीन को देती है, तो जमीन की नमी जो है ना वो बनी रहती है। किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, और इस मल्चिंग से वो नमी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी वो किसान बंधु इसको भी समझेंगे। आप अपने खेत में कोई फसल काटते हैं और उसका एक गट्ठा बना करके खेत में डाल देते हैं, जून का महीना है, मई जून का महीना, लूएं चल रही हैं, चारों तरफ पानी कहीं है नहीं, तप रही है जमीन। ऐसे मौसम में जो गट्ठा आपका खेत में पड़ा हुआ है फसल का भार, जिसको बोलते हैं गट्ठा बोलते हैं, वो उस भार को उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। सब किसान इसको स्वीकार, ये नमी कहां से आई जब चारों तरफ सूखा पड़ा है। ये जो मल्चिंग है अवशेष हैं ये आकाश के जलीय तत्व को खींच के जमीन को देते हैं, तो पानी की 50% जरूरत ही कम हो जाएगी। दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ,
0: किसान साथियों हम लगातार खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं। सो किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम 90.8 FM के साथ छाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तीसरा लाभ इसका यह है कि जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो रात में काम करता है, दिन में नहीं करता। दिन में क्यों नहीं करता? जब वो बाहर आता तो उसे पक्षी उठा ले जाते हैं
2: जी,
1: उसको अपनी मौत का खतरा है। वो इसलिए अंधेरे में काम करेगा, प्रकाश होते ही वो अंदर चुप बैठ जाता है
2: जी।
1: यदि किसान मल्चिंग करता, जमीन को ढकता है, तो वो केचुआ जो है रात की तरह अनुभव करके मरने के भय उसका खत्म कर दिया, तो वो फिर रात और दिन काम करेगा।
2: डबल शिफ्ट,
1: वो डबल शिफ्ट में आ जाएगा। डबल शिफ्ट करेगा और वो किसान की जमीन को ऑक्सीजन भी देगा, खाद भी तैयार करेगा, और वो वर्षा जल का नीचे जाने का भी प्रबंध करेगा, और गर्मी में पेड़ को सूखने भी नहीं देगा। ये अद्भुत काम वो करेगा। और चौथा इसका लाभ क्या होगा कि जो जीवाणु हैं, जो हमने गोबर से लिए थे, जिनको खाने के लिए हमने दाल का बेसन दिया था, अब धरती में वो आ गए तो क्या खाएंगे? उनको भोजन तो चाहिए। ये जो मल्चिंग है, घास फूस, ये उसका भोजन है। वो खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, पुष्ट रहेंगे, और इस सारी मल्चिंग को खा के खाद में बदल देंगे
2: जी।
1: इसको भी खाद में बदल देंगे। और अंतिम पांचवा इसका लाभ क्या है, जो किसान बहुत लेबर लगा करके घास निकालता खेत की, इसके बिछाने से खरपतवार पैदा ही नहीं होगा क्योंकि उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी
2: जी।
1: वो निकलेगा लेकिन पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा।
2: अच्छा।
1: और ये खरपतवार की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक खेती का दोनों तरफ से इस रूप में लाभ मिलता है। जब हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन, जो जमीन की फर्टिलिटी, वो बढ़ेगी। मैंने अपने खेत में, मेरे दो खेत थे, एक मैं 50, ये 100 एकड़ की मैंने जो बात की है
2: जी,
1: इसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। इसी के साथ बीच में एक पक्की सड़क से इधर हमारा 100 एकड़ का खेत था, जो मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे किसानों को दिया हुआ था,
2: बटाई पे दिया था।
1: ये किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण, इसे सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। वो जो भाड़े पे, बटाई पे मैंने खेत दिया था, मतलब मैं इकट्ठा पैसा लेता था, बटाई पे नहीं कुछ लेता था मैं। मैंने फिक्स किया था कि मैं 30,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, 40,000 रुपये पर एकड़ लूंगा और मेरा खेत तुम्हारा हो गया। मिश्रा जी, अब से 3 बरस पहले वो सब किसान इकट्ठे होके आए मेरे पास और उन्होंने कहा, जी हम आपका खेत नहीं लेंगे।
2: अच्छा।
1: छोड़ रहे। क्यों छोड़ रहे भाई? कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता, हम तो इसने कर्जा ही बना दिए। मैंने कहा क्यों? कि जी होता ही नहीं पैदा। मैंने कहा मेरे ये खेत और ये तो इकट्ठे हैं, और जब मैंने जमीन दी थी तब नहीं होता था कि तब तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता।
2: अच्छा।
1: मैंने गांव के और लोग बुलाए, भाई ये लोग सत बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच कह रहे, कुछ नहीं होता इनमें, खर्चा नहीं निकलता इनका। उन्होंने छोड़ दिए मेरे खेत। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर हरिओम की चर्चा की, उनको मैंने बुलाया, मेरे परिचय में भी थे, डॉक्टर साहब किसानों ने मेरा खेत छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ा इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं इसका? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं इस पूरे खेत के मिट्टी के सैंपल लूंगा और इनको यूनिवर्सिटी की लैब में भेजूंगा
2: जी।
1: वहां से टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा भूमि की क्या स्थिति है, उन्होंने सैंपल ले लिए, सैकड़ों सैंपल लेकर भेज दिए। डेढ़ दो महीने बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा किसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 पाया, किसी का 0.4 पाया, किसी का 0.5 से सब नीचे नीचे था
2: जी।
1: तो उन्होंने कहा जी ये किसान जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस जमीन की फर्टिलिटी खत्म है, इसमें तो यूरिया डीएपी भरकम डालोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कहा अब क्या करूं मैं, तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज पेन लेके लिखना शुरू किया, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, ये और इसमें जो अवशेष होंगे फसल के वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे सालों में ये बंजर हुई है, ऐसे कई सालों में जाके ये उपजाऊ बनेगी
2: जी।
1: मैंने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय, इतनी जमीन बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा रास्ता आपने बता दिया, मैं तो अपने ढंग से खेत करूंगा, आप क्या करोगे? मैं कहा ये जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे महाराज दुनिया बहुत आगे चली गई, साइंस का जमाना है, गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा? साइंटिस्ट मैं हूं या आप हैं? जो मैं कहूं वो करो। मैंने कहा आप वाले कहने से तो ये बंजर हुई है जो इन लोगों ने किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा मैं यही करूंगा जो अपनी बाकी खेत में करता हूं, जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। वो कहने लगे इसे कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी, जमीन आपकी, मैंने अपना बता दिया राय, अब जो करना करिए, और वो चले गए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: मिश्रा जी 3 साल पहले उस बंजर जमीन में मैंने 5-5 क्विंटल घनजीवामृत डलवाया पर एकड़, और उसमें धान की रोपाई की। जब भी पानी देता तो जीवामृत का उसमें घोल छोड़ देता, और 15 दिन बाद जीवामृत का मैंने 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डाल के उसका छिड़काव शुरू किया
2: जी।
1: फसल लहलाने लगी।
2: अच्छा,
1: इतना बढ़िया हरा भरा खेत। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मेरे जानकार थे वो, मैं कहा एक बार आओ आपको करिश्मा दिखाता हूं। तब उन्होंने 2-3 महीने के खेत को देखा तो उन्होंने कहा खेत तो वही है जिसे सैंपल लिए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी फसल कैसे है? तुमने यूरिया डीएपी डाला होगा? मैं कहा ना, एक बूंद भी नहीं, यही डाला बस। तो उन्होंने कहा जब ये फसल कटे तो मेरे को तोल होगा तो मेरे को दिखाना
2: जी।
1: तो उस बंजर भूमि में पहले साल एवरेज 21 क्विंटल धान निकला मेरा पहले वर्ष। और उसी चीज को मैंने बराबर चलाए रखा, अगले वर्ष उसी जमीन में एक ही साल के अंतर से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकला अगले वर्ष
2: जी।
1: अब वो कहने लगा कि भाई ये हो नहीं सकता, ये तो करिश्मा है। तो उन्होंने एक वर्ष के बाद उस मिट्टी के दोबारा सैंपल लिए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो भले आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, वो जिद्दी नहीं है, और उन्होंने कहा भाई यदि ये है तो ये तो बहुत
2: कुछ
1: क्रांतिकारी काम
2: है। जी जी।
1: तो उन्होंने उस पूरी जमीन के दोबारा सैंपल लेके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे और एक दो जगह भेजे, और वहां से फिर रिपोर्ट आई जिस जमीन का एक साल पहले 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में 0.7, 0.8 हो गया।
2: अच्छा।
1: वो कहने लगा हमारी साइंस में तो हो ही नहीं सकता। कभी आज भी पूरे देश का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे नहीं, और वो ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो उनकी सिस्टम तो जीवाणु को मारने का काम करता है, उनका सिस्टम तो केचुए को मारने का काम करता है, मित्र कीट को मारने का काम करता है। जो जीव ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं, वो मार दिए तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा कैसे, वो तो ये काम करते हैं। अब हमने जब ये किया तो इससे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव बढ़ गए, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में 0.3, 0.4, 0.5 से 0.7 और 8 पे गया। तो उसने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो अजीब है। और आश्चर्य उनको तब हुआ जब तीसरे वर्ष उसी में 32 क्विंटल एवरेज से धान पैदा हुआ, 32 क्विंटल। और अभी एक महीना पहले ये अब की साल जो कटा है उन्हीं खेतों में 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जब हमारा धान खेत में खड़ा था, दूसरी फसलें खड़ी थी, चारों एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर हमारे खेत में कुरुक्षेत्र गए।
2: अच्छा।
1: उन्होंने जाके देखा और ये अनुभव किया कि ऐसी फसल प्राकृतिक में हो सकती हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन चारों ने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहां पर भेजे। तो अब मेरी जमीन का, अब उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अब करवाया है तो वो 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर चला गया है।
2: अच्छा।
1: 1 से भी ऊपर चला गया। अब स्थिति ये पूरे खेत की हो चुकी है अभी जो किया। इसका एक और अंतिम उदाहरण मैं देता हूं। अब इन साइंटिस्ट में ये देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसमें रोग भी नहीं आएंगे, हमारी जमीन में खुशबू आना शुरू हो गई। अभी पिछले दिनों वही डॉक्टर बलजीत सारन और उन लोगों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग तहसीलों में गए, वो उन तहसील के एक किसान के खेत से मिट्टी ली, दूसरे तहसील के किसान के मिट्टी ली, तीसरे से ली जो रासायनिक खेती करते थे। ऐसे 5 किसान उन्होंने लिए जो रासायनिक खेती करते थे, उनकी मिट्टी लेकर के वो आए और उन्होंने सारी 5 किसानों की मिट्टी को इकट्ठा मिला करके यू मिला लिया और लैब में लेकर रिसर्च किया उस पे, तो उसकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले रासायनिक खेती में। फिर उन्होंने हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लिया 5 जगह से फिर उसको यूं ही मिलाया और लैब में लेके गए तो उसमें 161 करोड़ जीवाणु मिले 1 ग्राम मिट्टी में। हमारी 1 ग्राम में 161 करोड़ और रासायनिक में 30,05,000। अब आप ये साइंटिफिक आधार इससे बड़ा क्या होगा? साइंटिस्ट इस बात को तो मानेंगे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा तभी वो फसल बढ़िया देगी। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम मित्र जीव करते हैं, जीवाणु करते हैं, अब रासायनिक तो उनको मारने का काम करती है। और उसके बाद भी इस सिस्टम को जो ना माने तो ये तो किसान के साथ, बेचारे के साथ और लोगों के साथ बड़ी
2: बिल्कुल
1: नाइंसाफी है ना जी। तो ये इतने उदाहरण मोटे मोटे मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, मोटी मोटी जानकारी दी है। और इसका लाभ क्या होने वाला है जो मैं निवेदन करता हूं, कहने को ये प्राकृतिक खेती है लेकिन एक काम से अनेक लाभ और क्रांतिकारी काम क्या होगा, रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है और प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने का काम करती है। हवा हमारे अनुकूल बनेगी, पानी जल जीवन है, ये उसको वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और आज पानी पीने लायक नहीं बचा है, बोतल लिए घूमते हैं
2: जी।
1: प्राकृतिक खेती

0: फैक्ट्री है, यदि ये बचेगी तो इसका A2 दूध वो तो मानव के कल्याण पीने के काम आएगा और इसका गोबर गोमूत्र कृषि को बचाएगा। इस समय भारत सरकार 125,000 करोड़ रुपया वार्षिक यूरिया DAP पे सब्सिडी देती है। इतना बड़ा धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा?
1: बिल्कुल।
0: और ये 125,000 करोड़ नहीं, फिर किसानी से खरीदता है, ये 200,000 करोड़ का मामला है। और पेस्टिसाइड वो अलग है, कितना बड़ा एक चक्रव्यूह
1: बिल्कुल
0: चल रहा है, इससे निजात मिलेगी। और पांचवा इसका लाभ है कि जिस आहार को जहर वाले को खा के अस्पताल भरे पड़े, मैं सब बंधुओं से निवेदन करके पूछता हूं कि जब रासायनिक खेती नहीं थी 50-60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई हाइपरटेंशन को जानता था? ये इतने असाध्य रोग जिनके निदान के लिए अरबों रुपए के मेडिकल बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है,
1: जमीन
0: आदमी बीमार हो करके वहां पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, परिवार दुखी पर बीमार दुखी, ये सारी से मुक्ति का रास्ता इसे मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता करें कि किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, उसकी आय बढ़नी चाहिए, ये वो विकल्प है जो किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। और इसका एक प्रबल उदाहरण, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल में भी गवर्नर रहा
1: जी।
0: अंतिम 2 साल में मैंने वहां प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। जब मेरे खेत में ये परिणाम आए तो मैंने सोचा इस राजभवन में बैठ के क्या करेगा, इन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, जब एक सिस्टम तूने प्रैक्टिकल कर लिया तो इनका भला होना चाहिए। मैं गांव में घूमना शुरू हुआ और मैंने किसानों को जोड़ना शुरू किया। अंत के 2 साल में मैंने 50,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए।
1: अच्छा।
0: और इसको देख करके प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी रुचि ली और उन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया, उसमें एक IAS अधिकारी रखे, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोन सोलन के डॉक्टर राजेश्वर चंदेल साइंटिस्ट इसमें रखे, और उन लोगों ने समझ के, और मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ, मेरे आने के बाद 1,00,000 किसान नए जोड़ दिए उन्होंने। अब 1,50,000 किसान लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं जहर मुक्त। और 12 अप्रैल को पिछली जो अप्रैल गई है इसमें चीफ सेक्रेटरी हिमाचल की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने पूछा भाई ये जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं, जो आचार्य देवव्रत चला के गए थे, इसका कोई लाभ हुआ या हानि हुई? तो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए।
1: अच्छा।
0: के इस खेती करने के बाद जो लोगों ने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है। और 56% खेती की लागत कम हो गई। वहां के अमर उजाला अखबार ने इस न्यूज को छापा।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: यानी के 27% तो आय बढ़ गई और 56% लागत कम हो गई,
1: वो भी आय बढ़ गई।
0: और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का अभियान चलाया, तो यदि दोनों को जोड़ दें तो डबल की ओर बढ़ गई कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो इस खेती में प्राकृतिक में लागत शून्य के बराबर हो जाती और उत्पादन कम होता नहीं, उत्पादन बराबर चलेगा और लागत घट जाएगी तो किसान की आय वैसे ही बढ़ गई।
1: बिल्कुल।
0: अब अंतिम बात मैं करता हूं, अभी जो मेरे खेत में धान की बात मैं करता हूं, 33 क्विंटल एवरेज पैदा हुई है और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। अब रास

0: सैनिक वाले ने पानी से भी उसको भर के रखा, मैं पानी भी 50% दिया। उसके 10 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, मेरा 1000 रुपए प्रति एकड़ खर्चाया। उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 33 क्विंटल हुआ। अब और ये चीज जाके मेरे खेत में देख लो, आप वहां की मिट्टी टेस्ट कर दो, हमारी फसलों को जाके देख लो। और मजे की बात ये मिश्रा जी, आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता। आज उपभोक्ता को ये पता लगे कि इस उत्पादन में जहर नहीं है तो वो उसे डबल कीमत पे भी लेने को तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: और इस समय गुजरात सरकार, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा एग्रीकल्चर, हमारे मनीष भारद्वाज जी जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग, पूरी प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस पद्धति को जनमानस तक किसानों में पहुंचाने का अभियान चलाया। अभी हमने डांग जिला है, इस 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे कृषि सचिव महोदय, आत्मा के डायरेक्टर महोदय, सब ने उस जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। भारत का पहला प्राकृतिक जिला वो होगा,
1: यानी हर किसान प्राकृतिक खेती कर,
0: बिल्कुल, उसमें एक भी किसान नहीं बचेगा। वहां यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी पे प्रतिबंध है, और उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग दिया उनको, 1 हेक्टेयर के लिए 1000 रुपया प्रति एकड़, वो 10000 रुपया प्रति एकड़, हाँ, इतना सहयोग देंगे ताकि उनका मनोबल आए, उनको दिक्कत ना आए, और ये काम शुरू कर दिया। और प्रदेश सरकार ने जो किसान, यहाँ 2 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, और वो जो देसी गाय किसान घर में रखता उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार गाय के रख रखाव के लिए दे रही है। तो ये काम यहाँ शुरू होने से किसानों में एक जागृति आई है। अभी हमने 6 दिन का एक शिविर आज ही संपन्न किया है, इस दिसंबर मास में 3-4 शिविर और लगाने हम जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है, और हम किसानों में ये विचार मजबूती से फैला रहे हैं, और हजारों लाखों जो किसान कर रहे हैं उनके जो अनुभव आने लगे बड़े संतोषजनक हैं, और वो बड़े उत्साहित हैं। तो ये कृषि जो है हमारी, ये प्राकृतिक है, जैविक नहीं, रासायनिक नहीं है। इस समय हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये खेती साइंटिफिक नहीं है, इस पर वो नहीं हुए हैं शोध, तो हम उनसे आग्रह करते हैं आप शोध करिए, हम तो आपको आह्वान करते हैं। वो उदाहरण देते हैं, लंका ने इस काम को शुरू किया जैविक को, वहाँ बड़ा उत्पादन कम हो गया, दिक्कत आ गई, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जैविक किया इसलिए उत्पादन कम हुआ, उन्होंने प्राकृतिक नहीं किया इसलिए फेल हुए। प्राकृतिक करें, हमारे टी विजय कुमार चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रहे, आईएएस अधिकारी, वो हिमाचल आंध्र प्रदेश में पिछले 5-7 साल से इस खेती को करवाते हैं, 5 लाख से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जहां पानी भी नहीं है वहां 3-3 फसल किसानों की शुरू हो गई इस प्राकृतिक, इसी पद्धति से। यदि ये सफल नहीं होती तो 1.5 लाख किसान हिमाचल में क्यों जुड़ता,
1: बिल्कुल,
0: यदि ये ना होती तो हमारे गुजरात में क्यों जुड़ता। 7-8 साल से जो आंध्र प्रदेश में करते हैं वो क्यों जुड़ते। जैविक कृषि को 30 साल से हम करते आ रहे, उसे कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चे कम होते नहीं। तो जैविक कृषि भिन्न है, प्राकृतिक कृषि भिन्न है। हम प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कृषि को हम बढ़ाकर देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और जमीन को फर्टिलिटी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण बचे, पानी बचे, गाय बचे, और किसान की आय बढ़े, लोगों को स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद।
1: बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। और मुझे लगता है कि
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे आप स्वतः उनका जवाब देते चले जा रहे थे। मैं मन में मेरे श्रीलंका शब्द आया और आपने लंका कह दिया। तो इतने सरल तरीके से और इतने बहुत लूसिडली आपने बताया, बहुत धन्यवाद इसका। क्या जो भारत जैसे देश में जहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी इसका अर्थशास्त्र ठीक बैठता है?
0: इसमें मिश्रा जी, छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है।
1: ये।
0: कारण क्या है, छोटा किसान वो ट्रैक्टर रखेगा तो बड़ा उसको खर्चा बढ़ेगा।
1: ये।
0: यदि वो गाय रखता है 2-2.5 एकड़ का है तो बैल से करेगा तो मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे। और एक देसी गाय से तो 18-20 एकड़ से भी ज्यादा खेती हो सकती है। उदाहरण के लिए गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी
1: जी।
0: और एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खा तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से तो 30 एकड़ का तैयार है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो इतना बड़ा उपकारी जीव है कि इसका उपयोग किया जाए तो छोटा किसान मल्टी क्रॉप करेगा। 1 एकड़ में जब 4-5 तरह की फसल एक ही दम लेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी।
1: बिल्कुल।
0: और ये जीवामृत घन जीवामृत जितना डालेगा इसका नुकसान ही कुछ नहीं है, इसका तो लाभ ही लाभ, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। और आश्चर्य ये कि मेरे जो अपने खेत हैं इस साल उनमें केवल 1 बार जीवामृत देना पड़ा।
1: अच्छा।
0: 1 बार वो इतने बढ़ गए कि वो काटने पड़े हमें, पहले पशुओं को खिलाने पड़े, इतनी बढ़ गए वो, उनको खतरा था ये गिर जाएंगे और फल कमाएगा तो काटना पड़ा। इसलिए क्योंकि उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 और 1 से ऊपर चला गया,
1: ऊपर चला गया जी।
0: बीमारी भी नहीं आनी आती, क्योंकि वो बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी। अब ये जो कोरोना आया है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग होगी वो लड़ाई लड़ेगा, जो इम्यूनिटी कमजोर हो मर जाएगा। जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है तो उसको बीमारी आएगी नहीं। जी धरती में यूरिया डीएपी से उसकी जान निकाल दी, बीमारी तो उसमें आएगी। जो एंटीबायोटिक रोज खाएगा वो कैसे बीमारी से लड़ेगा। तो वही स्थिति भूमि के साथ।
1: बिल्कुल। और ये कैंसर जो वगैरह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक इतने सारे, हम में से हर इंसान अपने आसपास किसी ना किसी को जानता है जो इससे जूझ रहा हो या जूझ चुका हो। और ये पिछले 8-10 सालों 10-15 साल की ही
0: इसी की देन है।
1: तो बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो एकदम जुड़ के सेंस उसका।
0: मिश्रा जी, पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। वहाँ भटिंडा एक जिला है
1: जी,
0: वहां से कैंसर ट्रेन प्रतिदिन बीकानेर के लिए चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन
1: एक्सप्रेस। जी।
0: हाँ। यानी के पूरी भर के चलती, इतना कैंसर पहले कभी नहीं था। तो ये जो खानपान हमारा और स्लो पॉइजन पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी जहर शरीर में जा रहा है उसके दुष्परिणाम।
1: और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, एक ये तो किसान को फायदे हैं
0: जी,
1: और उपभोक्ता को
0: हाँ बहुत बड़ा। और इसी के लिए हमारे जो कृषि सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग है, वो बराबर इस मिशन पे लगा है। अब हमने लगभग 100 FPO बनाए
1: जी,
0: और 1 FPO में 300 किसान जोड़ दिए। अब जो छोटा किसान है 2-2.5-4 एकड़ का, वो अपना उत्पाद बेचने जाता, बड़ा उसको दिक्कत आती है। अब 300 किसान एक तरह की फसल इकट्ठी बेचेंगे तो उसका भाव उचित मिलेगा, उसकी जो पैसा मूल्य मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। तो इस दिशा में भी लगातार प्रयास हैं, अनेक जगह संपर्क बनाते जा रहे हैं ताकि इसका किसानों को उचित दाम मिले और उनकी मार्केट की व्यवस्था बढ़िया बन सके, इस पे भी बराबर काम चल रहा है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से बहुत जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही आपने जाना कैसे एक गाय जो हमारी देसी गाय है वो कितनी महत्वपूर्ण है और जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती है इससे हमें कैसे लाभ लिया जा सकता है, जैसे आपने जीवामृत और आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पता चला है। साथ ही आशा करते हैं कि आप सभी किसान भाई प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ अपना रुख करेंगे और अपनी खेती को अपनी आजीविका को सशक्त बनाएंगे। इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM की यही कोशिश रही है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं को, महत्वपूर्ण तकनीकों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारे किसान की आजीविका सशक्त बने, साथ ही हमारे किसान को आ रही खेती में जो समस्याएं हैं उससे हमारा किसान कैसे निजात पा सके। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, हमारी जैविक खेती है, उसमें हमारा किसान जोरों शोरों से सहभागी बने, जिससे कि हमारे ना केवल हमारे किसान के परिवार की बल्कि हमारे पूरे देश की जो रासायनिक खातों से जो हम उपजा रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिल सके। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं GI टैगिंग को लेकर। हाँ किसान साथियों, क्या है ये GI टैगिंग, आज की इस कार्यक्रम में हम जानेंगे GI टैगिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को, कैसे GI टैगिंग हमें मिलता है और उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए GI टैगिंग दी जाती है। किसान साथियों, GI टैगिंग से हमें बहुत ही फायदा मिलता है, तो इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सुनेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या मुनाफा मिल सकता है। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं ये एक रिपोर्ट।
4: GI टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल GI टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। GI टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण GI टैग यानी भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। GI टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ GI टैग का सफर करीब करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं जिन्हें GI टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहा चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को GI टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को GI टैग मिला हुआ है। GI टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है, जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।

0: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी, जीआई टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। जीआई टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले जीआई यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो जीआई एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहाँ अभी 415 के करीब GI टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगन पल्ली आम है, अल्फेंसो आम है, चाय है, और इस तरह शाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
0: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी GI टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये GI टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
2: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री
0: जी,
2: ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
0: जी,
2: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी GI रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकॉग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं
0: जी।
2: क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं, और ये जो बॉडीज जो होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है, जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो GI प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो GI रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये GI प्रोसेस कंप्लीट होता है
0: जी। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है, इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है, और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है हमारे देश से, बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से GI टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
3: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती
0: जी,
3: धान
0: जी,
3: बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व तो और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है
0: जी।
3: इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार हैं
0: जी।
3: लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक
0: जी
3: उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करे और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान बासमती चावल का जीआई टैग जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया चेन्नई जो रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला
0: जी।
3: उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है, इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर जहां जहां हमारा हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं
0: बिल्कुल
3: और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें
0: जी,
3: जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले, उसका लाभ मिले, क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा
0: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है।
3: देखिए जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है
0: जी।
3: जीआई टैग का जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं, इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है
0: बिल्कुल। इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
1: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जैसे अभी कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा एक प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूँ और इससे मुझे जो है एक एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ही ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहाँ पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
2: मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल।
2: दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में। उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वर्ल्ड वाइड से सेलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है। तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज़्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
0: जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
0: जी।
3: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
0: जी।
3: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था, आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हम हमारी एप्लीकेशन जो है हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं, और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो जीआई ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता, और हमारे जो किसान हैं, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
0: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहाँ पर तैयार किया है उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहाँ पर जीआई टैगिंग मिलती है तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान है या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
1: सभी को फायदा मिलता है
0: जी।
1: जब जीआई टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
0: जी।
1: अब बासमती जीआई टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हम चर्चा कर रहे हैं जीआई टैगिंग के बारे में। जीआई टैगिंग क्या होता है, कैसे हमें अपनी एक पहचान मिल सकती है और इसके क्या फायदे होते हैं, आइए इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं इन एक्सपर्ट की मदद से।
1: आते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी। हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं। क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
1: जी।
2: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई, उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है। जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहाँ किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआईज एग्जामिन करता है। और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
1: और तो जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, अपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
2: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जैसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
1: जी,
2: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशन आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया, उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है उसका एग्जामिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे बासमती का एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
1: जी।
2: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज, बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है। फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
3: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
1: जी,
3: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़े। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहाँ लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
1: जी।
3: और यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
1: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है, ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
4: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दी थी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
1: जी।
4: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है, तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है, और एक FPO बनाकर FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे, उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो GI टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहाँ पर हो जाती है जब हम GI टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है। ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहाँ पर प्रूव हो?
2: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कश्मीरी कारपेट्स में QR कोडिंग
1: जी।
2: एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं
1: जी।
2: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं, और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में, एक US की कंपनी राइस टेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम US में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें PIDA और CSIR का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की USPTO के सामने, और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस ये यही प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, US कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया, तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
1: तो जी बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर GI टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहाँ पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे। हम EBITDA की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। GI टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सकें, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
4: अब EBITDA पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो GI टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके, और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3,00,000 करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है, और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें,
1: बिल्कुल बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल बताएं क्या कह रहे थे आप।
4: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है। तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर GI ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो GI लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर। तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो GI टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
3: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल

0: जो किसान समूह जिनको आजकल पूरा पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके, और जो हमारी इस तरह की जो छोटी छोटी प्रोडक्ट हैं उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन GI करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको GI के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो GI टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे ना केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो GI,
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि GI टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहाँ पर GI टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहाँ पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
1: वही प्रक्रिया
0: जी।
1: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका GI टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो GI टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो GI टैग की आवश्यकता है। और जब GI टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है वो जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष GI उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
2: बिल्कुल,
0: क्या कहना
2: हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
2: उसमें जो GI ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि GI प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए GI प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है
0: जी।
2: बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही हैं, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के GI का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो हमारा GI एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर GI ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट्स जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इंफ्रिंजमेंट एक्शंस फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम GI लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
0: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, GI टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये GI टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
3: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
0: जी।
3: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
0: जी,
3: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
0: जी।
3: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
0: जी।
3: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
0: जी,
3: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
0: जी,
3: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ
0: जी,
3: और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चिंतता अगर हम अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
0: वो खरीदेगा ही और लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा।
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे
0: जी,
2: उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए
0: जी,
2: क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो हैं हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में, अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
0: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है।
2: गुणवत्ता
0: अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पर सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका।
1: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं प्रीमियम।
4: जी हाँ किसान साथियों, जीआई टैगिंग से हमें फायदा हो सकता है। एक तो हमें ये चीज बेचने में आसानी होगी, दूसरी चीज कि जो हमें इसके लिए कहीं कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद में एक प्रसिद्ध चीज होगी कि जो भी आएगा उसे खुद ही पता है कि यहाँ की ये चीज फेमस है और वह उसे लेना जरूर पसंद करेगा। जैसे कि अपने झबवा का अभी कड़कनाथ इतना फेमस है तो हर कोई जो भी आता है वो ज़रूर चाहता है कि जो मांसाहारी है वो ज़रूर चाहेगा कि मैं इसका टेस्ट करूं। साथ ही वो सारे जो लोग अंडा खाते हैं वो काफ़ी अंडे की भी डिमांड है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें इसमें जो इसको इसमें जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम अगर ये हमारे लिए एक अच्छा है कि हम यहाँ पर कड़कनाथ होता है, इसका मतलब ये नहीं हम उसमें भर भर के पूरा कड़कनाथ पाले और जिससे अधिक पालने के चक्कर में हमारा क्या होता है जो क्वालिटी है उसको हम खराब ना करें। हमें हमारी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है, उसका भी प्रबंधन करना है, साथ ही हमें अपनी जो क्वांटिटी है उसको भी बनाकर रखना है। तो इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटाबिल 90.8 FM के साथ झबवा की आवाज़।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का स्वागत है, और आज जो हमारे प्रोग्राम में कलाकारा हैं उनका नाम है आरती जी। बाकी की बातचीत हम उन्हीं से करेंगे। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस गीत से।

0: बहुत ही प्यारा गीत। आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मेरे प्यारे सभी सुनने वालों को आरती रॉय का सादर प्रणाम, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने पूछा मेरा जन्म स्थान, तो मेरा जन्म स्थान हरियाणा का एक शहर करनाल है। शायद आपने से उन बहुतों को ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगी कि कल्पना चावला का भी जन्म स्थान करनाल ही है और रिश्ते में वो मेरी नीज होती हैं, मेरी भतीजी होती हैं, तो उम्मीद है अब आपको सब याद आ गया होगा और करनाल के बारे में भी। That is the most interesting thing about my town.
0: Fantastic, fantastic. बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आरती जी का ही गाया हुआ एक और गीत।

0: आरती जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब भी आप कहाँ रहती हैं और उस जगह के बारे में कुछ बताइए।
1: यस ऑफ कोर्स समीर जी, मैं लुधियाना में रह रही हूँ। पंजाब में है लुधियाना। लोगों को मालूम ही होगा कि लुधियाना एक इंडस्ट्रियल सिटी है, हौजरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मैं पिछले 3.5 साल से यहाँ पर हूँ। 3.5 साल पहले हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, यहाँ आए थे। तो अनफॉर्चुनेटली माय हस्बैंड पास्ड अवे लास्ट ईयर ड्यू टू लिवर सिरोसिस डिजीज। तो उसके बाद अभी तक फिलहाल मैं यहीं पे हूँ, करनाल, सॉरी लुधियाना में।
0: जी बिल्कुल ठीक। दोस्तों आपने सुना, आरती जी लुधियाना में हैं। तो आइए हम एक गीत भी सुनते हैं आरती जी का गाया हुआ।

0: बहुत ही प्यारा गीत। आरती जी, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि गाना गाने का शौक आपको कब से हुआ, कब से लगा आपको कि मुझे गाना गाना चाहिए?
1: मुझे याद नहीं समीर जी मैं कब से गाना गाती हूँ। मुझे लगता है मैं बचपन से ही गाना गा रही हूँ। अब बचपन में ही मैंने जब गाने सुना करती थी तो गाने लिख लिया करती थी अपने हाथों से। मैंने एक पूरी नोटबुक पूरी मैं उसमें आशा जी के, लता जी के, मोहम्मद रफी साहब के सबके गाने मैं जो सुनती थी मुझे पसंद थे मैं लिख लेती थी। और वही मुझे अभी तक भी याद है। मेरी गानों को लेकर मेमोरी थोड़ी एलिफेंट मेमोरी रही है और मुझे बचपन से ही गाने का शौक है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों एक गीत भी सुनते हैं आरती जी का गाया हुआ।

0: आरती जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको संगीत में क्या पसंद है? किस तरह के गीत पसंद हैं? फिल्मी, नॉन फिल्मी, गजल्स, क्या?
1: संगीत में मुझे सभी तरह का मेलोडी पसंद है। मुझे फिल्मी गाने, लता जी के, आशा जी के, सुमन कल्याणपुर, मुबारक बेगम, जसकीत कौर, मोहम्मद रफी साहब, सब ये सब बहुत

0: पसंद है। बचपन से ही गजलें भी बहुत पसंद हैं। बचपन से मैं मेहदी हसन साहब की गजलें सुना करती थी, जगजीत सिंह की, बाद में आए लेट 70s में, तो सारी दुनिया अब उनकी मुरीद हो गई थी। तो बहरहाल मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह जी, पंकज उधास और गुलाम अली मेरे फेवरेट गजल गायकों में से हैं। इसके अलावा तलत अजीज भी मुझे बहुत पसंद है, भजन सुनना भी पसंद है, और मैं थोड़े फिल्मी भजन गा भी लेती हूँ, और सेमी क्लासिकल और क्लासिकल म्यूजिक भी मैं कई बार सुनती हूँ, पर ज्यादा मुझे ओल्ड मेलोडीज ही पसंद है।
1: बहुत बढ़िया। लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं आरती जी का गाया हुआ।

0: बहुत प्यारा गीत। आरती जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरे सबसे पसंदीदा गाने वालों में से मोहम्मद रफी, आवाज उनके गले से निकलकर सुनने वालों की रूह की गहराई में उतर जाती, मेरी कैफियत भी कुछ ऐसी ही हो जाती है उनकी आवाज सुन के। और इसके अलावा हेमंत कुमार, सभी पसंद है और बहुत पसंद है। मोहम्मद रफी साहब का दिन ढल जाए हाय रात न जाए गाना मेरा बहुत पसंदीदा गाना है, तो ये सब लोग मुझे बहुत पसंद है।
0: जी बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, सुनते हैं आरती जी का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया आरती जी। और अब वाला सवाल मेरा पिछले सवाल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ ही है, आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है?
1: जी हाँ, अभी मैंने जैसे बताया व्हाट इज कोइंसिडेंस, आप वही बात पूछ रहे हैं। और मोहम्मद रफी साहब के बहुत अच्छे गाने हैं, और जैसे मैंने बोला गाइड फिल्म का ये गाना दिल दहल जाए मुझे बहुत पसंद है। इस गाने से एक्चुअली मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, तो इसलिए मुझे ये गाना बहुत पसंद है। वैसे तो मोहम्मद रफी साहब के बहुत सुंदर गाने हैं, यू नेम एनी थिंग, और आप कह ही नहीं सकते कि आपको ये पसंद नहीं है, पर तो ये गाना मुझे दिल के बहुत करीबी है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों सुनते हैं आरती जी का गाया हुआ एक और गीत।

0: आरती जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं? जब कभी भी आपको थोड़ा वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं आप उसमें?
1: मेरी हॉबीज पहले रीडिंग हुआ करती थी, बहुत पढ़ा करती थी। आई यूज्ड टू बी एन एविड रीडर। आजकल बहुत कम हो गई है एक्चुअली, कंसंट्रेट नहीं कर पाती रीडिंग में। आजकल पोइट्री राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई यूज टू राइट, आई यूज टू पेन डाउन पोइट्री, और कई बार सोते सोते 4 बजे उठ जाती हूँ और कई ख्याल मन में घुमड़ रहे होते हैं तो फटाफट उनको मैं लिख लेती हूँ। और सिंगिंग से, सिंगिंग मेरी इस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव हॉबी है। और इसके अलावा ओल्ड मेलोडी सुनना और टीवी पे उर्दू ड्रामा देखना मुझे बहुत पसंद।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना आरती जी की हॉबीज क्या हैं, आरती जी अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करती हैं। तो आइए एक गीत भी सुनते हैं आरती जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बड़ा ही सुंदर गीत। आरती जी आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जैसे ही सिंगर्स के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए, कुछ कहिए उनसे।
1: मैं समझती हूँ हम जैसे तमाम सिंगर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी आवाज सिर्फ आपकी है, किसी और की तरह नहीं है। आपकी आवाज अपने आप में यूनिक है, बस उसी को निखारिए और अपने नेचुरल अंदाज में गाइए। कॉपी करने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हर आवाज इंडिविजुअल आवाज होती है और यूनिक है। अपने अंदाज में गाइए, दिल से गाइए, सुर में गाइए और बस फिर गाते जाइए।
0: बहुत बढ़िया, प्यारा सा संदेश, प्यारा सा मैसेज। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत आरती जी की आवाज में।

0: और आरती जी, अब हम हमारे प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए भी आप एक संदेश दीजिए, कुछ कहिए उनसे।
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कोशिश हमेशा करते रहिए कि कोई गलत फैसला ना ले लें, और भले ही कोई भी काम हो वो देर से हो, लेकिन सोच समझ कर जिंदगी के फैसले करें। कभी कभी आपका एक गलत फैसला आपकी सारी तस्वीर और तकदीर बदल देता है आपकी जिंदगी की। तो वक्त के साथ बहते रहें, फ्लो में रहें, के सामने अड़ के खड़े मत हो जाएं, बस इस वक्त के साथ बह जाएं, उसके ऑपोजिट नहीं जाएं। अच्छे दोस्त बनाएं, लेकिन दोस्ती निभाएं भी, खुश रहें। खुशियां जब पास होती हैं तो हमें ज्यादातर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो होती तो हैं, उनकी कदर कीजिए, हर पल को जिए। क्योंकि जब खुशियां हाथ से फिसल जाती हैं तो वक्त काटे नहीं सकता, इसलिए अपनी खुशियों को पकड़ रखें। अपने माँ बाप से प्यार करें, बहन भाइयों से प्यार करें, सब रिश्तों की कदर करें, उन्हें निभाएं, खुश रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। एक अच्छी मुस्कान से बढ़कर कोई नयामत नहीं है, जो होठों से हो लेकिन आंखों में भी नजर आए। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़े ही प्यारा मैसेज। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और गीत आरती जी का गाया हुआ।

0: बहुत बहुत आभार आरती जी, जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके गीत सुनकर, आपकी बातें सुनकर श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।
1: मुझे भी बहुत मजा आया, ऑल्दो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, पर मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आई एम ट्रूली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक और नया एपिसोड, और आज हमारे मेहमान हैं, गायक हैं, प्रतिभा हैं, टैलेंट हैं, वो हैं इमरान भाई। बाकी मैं इमरान साहब से ही गुजारिश करूंगा उनका आभार प्रकट करते हुए, उनका वेलकम करते हुए, कि इमरान भाई हमें बताइए ना, हम सभी सुनने वालों को जो आज के कलाकार फैमिली के आज इकट्ठा हुए हैं आपको सुनने के लिए, बताइए हमें कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं आप?
1: सबसे पहले तो काफी धन्यवाद आपको, आपने मुझे एक मौका दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं बेसिकली हूँ मुंबई से और बैंगलोर में मैं जॉब करता हूँ। तो अब जब हम ये चीज कर रहे हैं, मैं अभी इस वक्त बैंगलोर में हूँ।
0: ऑलराइट, दैट्स वेरी नाइस। ओके, और आप कहाँ पर जॉब करते हैं, मतलब व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप?
1: मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट।
0: ओके,
1: और वहाँ पे मैं एज ए टेक्निकल एडवाइजर काम करता हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है पूरा, सो कंप्यूटर आईटी उसी फील्ड में हूँ।
0: दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, बेंगलोर जो कि प्रोमिनेंटली गीत संगीत से लबरेज हमें सुनाई दे रहा है, ढेर के ढेर टैलेंट्स, अमेजिंग सिंगर्स हमें रोज सुनाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। तो इमरान भाई भी उसी शहर से हैं और बहुत बहुत प्यारे से गीत हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करें इस प्यारे से प्रोग्राम को इमरान भाई के ही गाए हुए इन गीतों के साथ।

0: बहुत खूब, अमेजिंग। चलिए इमरान भाई, अभी आपके संगीत के बारे में तो हम बात करेंगे ही, आपके गीत सुन रहे हैं तो 80% तो हमें पता चल ही रहा है कि संगीत आपके लिए क्या मायने रखता है और आप किस तरीके के संगीत में हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि हम आपको भी जानना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइए आप किस तरीके के इंसान हैं। एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं? एक्सट्रोवर्ट हैं तो जाहिर से बात है कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड होते होंगे, और अगर इंट्रोवर्ट हैं तो हो सकता है बुक्स में या म्यूज़िक में तो आप हैं ही। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट?
1: मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट हूँ। पर्सनैलिटी थोड़ा शाय टाइप है, तो पब्लिक परफॉर्मेंसेस या पब्लिक इवेंट्स जो बड़े बड़े होते हैं जिसमें यू नो मैं कभी ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा हूँ, अपने आप को पीछे ही रखा है, ना ही सिर्फ संगीत के बारे में बट जैसे ऑफिशियल इवेंट भी होते हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे ही रहता हूँ इन सब चीज़ों में।
0: ओके, तो जो इंट्रोवर्ट इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो बहुत अच्छे फिलोसोफर्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो कुछ ना कुछ कला में चुपचाप अपने साथ मस्त रहते हुए बिजी रहते हैं, तो आपको क्या पसंद है संगीत के अलावा बताइएगा इमरान भाई। वो तो मुझे पता है कि संगीत आपका पैशन है, दैट इज़ फाइन, उसके अलावा इंट्रोवर्ट होने के नाते आप और क्या क्या एक्टिविटी करते हो आपके साथ?
1: संगीत के अलावा मैं लिखता भी हूँ, तो मैंने अब तक कुल 10-12 नॉवेल्स पब्लिश किए हैं, और बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं उसे कोई और नाम से पब्लिश करता हूँ। ओमेगा एमजी नाम से मेरे नॉवेल्स पब्लिश होते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है अमेजोन वगैरह जगहों पर। तो मैं जैसे कि मेरे जी कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो मुझे जानते हैं ऑफिस में वगैरह, उन्हें ये दोनों चीज़ें नहीं पता है। खैर, गाता तो मैं कुछ खास नहीं और लिखता भी कुछ उसी तरीके से हूँ, बट शौक है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लिखना चाहिए। इंट्रोवर्ट का एक ये है कैरेक्टरिस्टिक कि वो छुप के ही रहते हैं।
0: नहीं, आई फुल्ली एग्री। तो लेकिन जो आपने अपनी लेखनी की बात की, अपने लिखने की बात की, है ना, सो किस तरीके की आप नॉवेल्स में, आपने शायद बताया नॉवेल्स लिखते हैं आप, करेक्ट?
1: जी सर।
0: तो कोई नॉवल आपने अभी तक पब्लिश किया?
1: जी हाँ, 10-12 नॉवेल्स पब्लिश कर दिए।
0: ओह माय गॉड, आप फिर इंट्रोवर्ट कहाँ से रह गए यार?
1: सर, तो लोगों को नहीं पता है कि वो मैं हूँ। मैंने एक पेन नेम यूज किया है ओमेगा एमजी नाम से।
0: दैट्स नाइस। तो कौन कौन से आपके जो फेवरेट नॉवल होंगे, 2-3 हमें बताइए, और ये सब अमेजोन पर अवेलेबल है क्या, हम वहां पर उनको देख सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, सारे अमेजोन पे अवेलेबल है। देखिए, अब मैंने लिखे हुए नॉवेल तो कैसे होता है कि जैसे कि समंदर की लहरें कुछ ऊंची कुछ नीची, बट लहरें हैं, सो उसी तरह से सारी नॉवेल जब मैं लिखता हूँ तो वो मेरी फेवरेट होती है। जब वो पूरी हो जाती है और जब मैं दूसरा लिखने जाता हूँ तो वो फेवरेट हो जाती है। बट इनमें सबसे एक मैंने लिखी है माया, वो माया मुझे काफी क्लोज लगती है क्योंकि जब मैं बैंगलोर आया था, एक इंट्रोवर्ट सा इंसान अकेला आके, लैंग्वेज प्रॉब्लम था और लोगों ने काफ़ी हेल्प की, सपोर्ट की, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ करता था, कभी मुंबई से बाहर नहीं आया था, फर्स्ट टाइम बैंगलोर आया था, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत मैंने वो भी उसमें डालने की कोशिश की है। सो वो मेरी एक फेवरेट है जिसका नाम है माया। वैसे वो प्रोटैगनिस्ट तो एक फीमेल है उसमें, क्योंकि मैं ज़्यादातर फीमेल जेंडर के हिसाब से ही लिखता हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ उनकी, तो मैं सोचता हूँ कि भाई उनको भी लोग समझे, उनके बारे में भी कुछ जाने, तो ऐसे माया इज माय फेवरेट।
0: ओके, मैं अगर इसको गूगल करूँ तो कैसे मिलेगा मुझे? मैंने लिखा है बुक माया, आगे क्या लिखूँ?
1: हाँ, सो माया जो है मैंने किंडल पे किए हैं पहले 4, तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं माया बाय इमरान मुकरी, तो आपको आ जाएगा।
0: ओके,
1: आप अमेज़न पे डाल देंगे तो आ जाएगा।
0: जी मैं इमरान, जी मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मिला है मुझे, किंडल एडिशन है इसका। ओके
1: जी,
0: तो दोस्तों जाहिर से बात है इमरान भाई की लिखी हुई ये बुक आई कैन सी, आप भी देख सकते हैं कि इनकी बुक अवेलेबल है, और इसी तरीके की अगर हम इनको ढूंढने निकलेंगे, इमरान भाई को ढूंढने निकलेंगे, तो बड़ी सारी बुक्स हमें दिख जाएंगी यहाँ पर। बहुत चलिए, तो आगे बढ़ते हुए प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं जो इमरान भाई ने हमारे लिए तैयार किए। संगीत के साथ साथ किताब का भी उन्हें शौक है, पर अभी तो हम लोग इनके संगीत का आनंद उठाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो इमरान भाई, जैसे आपने इंट्रोवर्ट होने की बात की, चलिए किताबें हो गई जो कि बहुत बहुत बढ़िया है, मैं समझ सकता हूँ बिकॉज मैं खुद एक ऑथर हूँ, तो आई कैन सर्टनली अंडरस्टैंड जो एक लेखक के दिमाग में चलता है वो मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से, और हर लेखक का अपना एक जॉनर होता है, वो किस किस चीज़ के बारे में लिखता है, वो चीज़ बढ़िया है। लेखनी के अलावा और क्या चीज़ आपको पसंद आती है? कहीं घूमने जाना, कुछ लोगों से बातचीत करना, मे बी कुकिंग, मे बी कुछ और? सो कुछ और है तो बताइए सर।
1: सारी चीज़ों में अगर हम कंपेयर किए तो घूमने जाना तो है ही, बट थोड़ा सा आनंद में कुकिंग से भी ले लेता हूँ।
0: वेरी नाइस।
1: वो भी मेरे जैसे मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो अकेला रहता था, फिर दो फ्रेंड्स साथ में आ गए तो प्रॉब्लम था कुकिंग का, तो सीख लिए, तो धीरे धीरे उसमें भी आनंद आने लग गया, तो फिर वो कुकिंग में भी इंटरेस्ट हो गया, तो अभी मैं खुद ही कुक करता हूँ अपना खाना।
0: नहीं नहीं, तो कोई स्पेसिफिक डिश जो आपको लगता है और आपके कुछ जानकार लोग जो नज़दीकी होंगे उन्होंने टेस्ट किया होगा और कहा होगा कि हाँ ये डिश आप शानदार बनाते हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश?

0: जी पुलाव अच्छा बनाता हूँ मैं
1: ऑलराइट ओके
0: वेज में, क्योंकि मैंने सबसे पहले राइस ही चुना और उसमें ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया करता था पुलाव बनाते हुए, तिरंगा पुलाव या कुछ अलग अलग नाम देते थे हम मस्ती मजाक करते हुए, तो पुलाव मैं अच्छे से बना लेता हूँ।
1: दैट इज सो वेरी नाइस, दैट इज सो वेरी नाइस। जाहिर सी बात है अगर बहुत डेलिकेटली पुलाव को बनाया जाए तो बहुत ही बड़ी प्यारी सी खुशबू के साथ बहुत ही लजीज एक डिश बन के बाहर निकलती है। बहुत खूब
0: जी सर।
1: चलो दोस्तों, आपके मुंह में 100% पानी आ ही गया होगा, बट जरा उस पानी को रोकिए, अपने कानों को जरा ट्रीट कीजिए। एक जश्न मना रहे हैं आज के आपके कान। आइए सुनते हैं इन दो प्यारे प्यारे गीतों को जो इमरान भाई ने हमारे लिए तैयार किए।